0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और SJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को

0: बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजल्टा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और एआई से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpol D.N. Thungyel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Defence Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said he will attend the inaugural ceremony of an event organised by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft, Tejas final operational clearance twin-seater trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force, and drove NG helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making use of foreign contributions more transparent and accountable.

किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमें FM गोल्ड 100.1 MHz पर और इंटरप्रेस के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और दोस्तों, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा संगीत सुनते रहिए।

आज के दिन की खास बात करते हैं। एक दिन और है आज का, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यानी कि एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नौकरी और वेतन से जुड़ा नहीं बल्कि बराबरी, सम्मान और न्याय से जुड़ा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। इस दिन का उद्देश्य है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि समान काम करने वाले के लिए यानी समान वेतन मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है। सोचिए, अगर दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां और योग्यता समान है, तो केवल उनके महिला या पुरुष होने के कारण उनके वेतन में अंतर क्यों हो। समान वेतन का मतलब केवल पैसे की बराबरी नहीं, ये उस सोच को बदलने की बात है जिसमें किसी व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा को अपने यानी उनके जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा आंका जाता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे जिम्मेदारियां निभा रही हैं, नए मुकाम हासिल कर रही हैं और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे में उनकी मेहनत का समान मूल्य और समान सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। हमें अपने कार्यस्थलों पर समान यानी कि अवसर को बढ़ावा देना चाहिए और साथ में अगर हम कहीं वेतन में असमानता देखते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने और सही बदलाव की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत बराबर हो तो मूल्यांकन भी बराबर होना चाहिए और सम्मान भी। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस यानी कि समान वेतन दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास समान अवसर, समान मेहताना और समान यानी कि साथ में सम्मान की सोच को मजबूत करेंगे। तो याद रखिए, बराबरी किसी एक की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की है। आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी अग्नि परीक्षा, और गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे, और आज के दिन हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। खास तौर पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके लिए ही उपस्थित होते हैं। अब ये बात की है तो बुजुर्गों के आज कार्यक्रम हम आपको जरूर सुनवाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले

एक कदम बुजुर्गों की ओर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि बुजुर्गों से माफी और आशीर्वाद दोनों जरूरी है। कहते हैं घर में बुजुर्ग हो तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता बल्कि अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना बन जाता है। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के बड़े हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी हमारी बात का लहजा गलत हो जाता है, कभी हम उनकी किसी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कभी व्यवस्था के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि छोटी सी माफ कर दीजिए कितनी बड़ी दूरी को खत्म कर सकती है ये बात? बुजुर्गों से माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों की कद्र करना है। उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगने से हमारा सम्मान कम नहीं होता बल्कि रिश्ते और मजबूत होते हैं, और माफी के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ खुशी नहीं देता बल्कि जीवन की मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, घर में जो बड़े हैं उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए। अगर कभी जाने अनजाने आपका दिल दुखा हो, यानी कि तो दिल से कहिए मुझे माफ कर दीजिए और फिर प्यार से उनके चरण स्पर्श कहिए और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए ये कहिए। और खास तौर पर यकीन मानिए, उस पल की खुशी किसी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा अनमोल होगी, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी माफी सुकून देती है और आशीर्वाद जिंदगी सवार देता है। बुजुर्गों की क्षमा में भी हमारी मुक्ति है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

0: दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपका स्वागत है, आपके विचारों का और आपकी पसंद का। आपके सुझाव आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जब बात हो रही है एक कदम बुजुर्गों की ओर की, तो उम्र बढ़ती है, रिश्तों की जरूरत नहीं घटती। बुजुर्ग हमारे घर की जड़ हैं, उन्हें समय और सम्मान दें। उनकी मुस्कान से हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं, अपनापन उनके दिल तक पहुंचाएं। आइए बुजुर्गों का हाथ थामें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए कितने खास हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्यासा सावन। और अब बात करते हैं कुछ टूटते परिवार और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में वो रिश्ते हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद, बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वहीं उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर वे अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है, रिश्तों की जोड़ कर रखने की क्षमता है। उनकी कही हुई छोटी सी बात भी कई बार हमें बड़ी मुश्किल से में पचा सकती है। यानी कि उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करना, उनकी पुरानी यादें सुनना, बस उनका हाल पूछ लेना, इन छोटी छोटी चीजों से उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे अनमोल धरोहर है। आइए टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करें। शुरुआत करें अपने घर से, अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान और प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं। आइए सुने लम्हे फिल्म।

बात करते हैं जब मोबाइल बड़ा हो गया और बुजुर्ग छोटे। आप कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर, विशेष कार्यक्रम आज हमारा आप सुन रहे हैं। तो अब ये कहना है कि एक समय था जब घर में सबसे बड़ी कुर्सी दादाजी की होती थी, सब उनसे पूछकर फैसला लेते थे। आज घर में सबसे बड़ी स्क्रीन मोबाइल की है और सबसे अकेली कुर्सी फिर भी दादाजी की ही है, क्योंकि हम सब एक ही घर में हैं, अलग अलग दुनिया में। ऐसा लगता है कि पोता रील देख रहा है, बेटा लैपटॉप पर है और दादी दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही है कि कोई उनसे दो बात कर ले। हम कहते हैं बुजुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, सच ये है हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। क्या हमने कभी 10 मिनट निकालकर अपने पिता को वीडियो कॉल करना सिखाया? क्या माँ को सिखाया कि यूट्यूब पर भजन कैसे सुनते हैं? उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेला मत छोड़िए, उन्हें व्हाट्सएप पर फोटो भेजिए, उन्हें फोन मिलाना सिखाइए। जब वो आपके दोस्त से वीडियो कॉल करेंगे तो उनकी आंखों में जो चमक आएगी वो किसी भी लाइक से सबसे बड़ी होगी। तो मोबाइल से जुड़ने के लिए बना था, यानी कि दूरी के लिए नहीं। तो आज से एक नियम बनाइए, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के और सिर्फ बुजुर्गों के नाम।

और अब बात करते हैं कुछ यानी कि दवा से ज़्यादा दुआ, सेहत और सम्मान की। हम सोचते हैं बुजुर्गों को सबसे अच्छी दवा चाहिए, सबसे बड़ा अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर उससे भी पहले उन्हें कुछ और भी चाहिए। उन्हें समय पर खाना चाहिए, रोज़ 20 मिनट की सैर चाहिए और प्यार भरी बातें चाहिए। हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द है, हम दर्द की दवा ला देते हैं, पर क्या हमने कभी उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए ले जाने के लिए जिद की? क्या सुबह उनके साथ सैर पर गए हम सब? नहीं, बुजुर्गों की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, सम्मान की भी है। जब हम उन्हें अरे आप से नहीं होगा कहकर रोक देते हैं तो उनका मन सबसे ज्यादा दुखता है। उन्हें छोटा बच्चा मत समझिए, उन्हें सहारा दीजिए, बेसहारा मत बनाइए। हाथ पकड़कर चलाइए, हाथ पकड़कर बिठाइए मत। एक कदम बुजुर्गों की ओर का मतलब है उनकी दवा का टाइम याद रखना, उनके चश्मे को साफ कर देना, उनके जूतों में कील अगर कोई है तो वो भी देखकर निकाल देना। तो याद रखिए, दवा शरीर ठीक करती है पर दुआ और सम्मान आत्मा को ठीक करता है। और बुजुर्गों की दुआ में सबसे बड़ी कोई दवा नहीं, यानी कि उनकी दुआओं में भी हमारी ही जिंदगी बसी हुई है।

और अब बात करते हैं, जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बन के खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं यानी हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो सिखाया है प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। जी, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत, फिल्म है।

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छता की। जी हाँ, जब हवा की बात हो रही है तो जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों, पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत तभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें और छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। एचटीटी-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा

0: The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Toor have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर.
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू. दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन. वेटर ने फेंका स्पिन. 4,000 का आया बिल. रोहन का धड़का जोर से दिल. वो अपना वॉलेट गया था भूल. रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल. आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट. डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट.
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
4: हर लेन देन अब है आसान.
1: नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त घड़ी हमारी इशारा कर रही है. वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये हुए पूरे 55 सेकंड. स्वागत है आप सभी का. और आज का ये जो कार्यक्रम है वो है क्या, जी हाँ, एक ही फिल्म से. और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूंगी आपके रेडियो हम सफर सोनाली. नमस्कार श्रोताओं, देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद कहानी याद रहती है, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका पूरा सफर याद रह जाता है. आज की फिल्म ऐसी ही है. और बस वो कौन सी है, ये इस गाने को अगर मैं आपके सामने रखूंगी तब बखूबी पहचान जाएंगी कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ. और ये जो फिल्म है इससे जुड़ी आपकी जो भी यादें हैं वो आप हमारे साथ यहाँ पर जरूर बांटेंगे. तो हम शुरू करते हैं आज का ये सफर जो है इस फिल्म के साथ.

तो बस इस गाने को सुनकर कौन नहीं पहचान पाएगा कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, हमारी आज की फिल्म है 3 मार्च 1973 को रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा, और बॉम्बे से गोवा का सफर। बस में बैठे अलग अलग मिजाज के लोग, थोड़ा प्यार, थोड़ा डर, खूब सारी मस्ती और रास्ते भर होने वाला हंगामा। और हम बात करें जी हाँ इसी फिल्म की, तो उसमें इस फिल्म में ये सारी बातें थी। तो अगर हम बात करते हैं निर्देशन की इस फिल्म के, तो ये निर्देशन किया था इस फिल्म का एस रामानाथन ने, और फिल्म के निर्माता थे महमूद और एनसी सिप्पी। कहानी उस समय की है, एक तमिल फिल्म बनी थी उस समय, मद्रास टू पौंडिचेरी, उससे ली गई थी इसकी फिल्म की कहानी। और फिल्म का जो संगीत है वो दिया था आदि बर्मन ने, और गीत किसने लिखे थे, राजेंद्र कृष्ण जी ने। तो फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका सफर। तो मैंने आपको बताया ना, ये सफर आज हम अपने इस आधे घंटे में तय करेंगे, जिसमें से हमारे पास थोड़ा सा और कम वक्त रह गया है। तो ये सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो अगर इस फिल्म की बात करूं, तो यहाँ पर ये है कि इस फिल्म की खासियत की मंजिल है गोवा, मतलब बॉम्बे से गोवा जा रही है एक बस, और उसके अंदर ये सारे सारे जो भी बातें हो रही हैं, जो भी गाने हो रहे हैं, जो भी कहानी है, वो सब चलती है इसी सफर के दौरान। फिल्म की कहानी शुरू होती है माला से, जिसका किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया है, और माला को फिल्म में काम करने का सपना दिख रही है, उसे शौक है और उसे लगता है कि उसका सपना अब पूरा हो सकता है। लेकिन इसी चक्कर में वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाती है जो उसके भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। अब देखिए माला के साथ में इस सफर में कौन है उनका हीरो, उसके बारे में तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी। आप अपनी जो भी बातें इस फिल्म से जुड़ी हैं हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम आगे बढ़े उसके पहले सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा का एक और प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रही थी बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये गाना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की कहानी की, जो बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो हमने जैसे आपको बताया कि माला को फिल्म में काम करने का शौक है, लेकिन गलती से वो एक खून देख लेती है और वो भागती है वहां से। अब क्या होता है कि वो माला किसी तरह बचकर गोवा जाने वाली बस में बैठ जाती है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का असली सफर। इसी बस में उसकी मुलाकात होती है रवि से, जी हाँ, हमारे अपने अमिताभ बच्चन से। तो रवि उसकी मदद करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता भी बनता है। अब देखिए रिश्ता बनता है और इस रिश्ते की शुरुआत ऑलरेडी कहीं से हो चुकी है, जी हाँ, उनके परिवार की तरफ से हो चुकी है। उस बारे में हम आपको क्या ही बताएंगे, आपसे बेहतर तो इस कहानी को कोई जानता भी नहीं होगा। फिर भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा और इस कहानी को आगे लेके चलती हूँ। देखिए माला का जो पीछा करने वाला है वो है शर्मा, यानी शत्रुघ्न सिन्हा। इतनी आसानी से वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और बस आगे बढ़ती जाती है और कहानी भी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ रवि और माला की कहानी नहीं है, ये जो है ना, ये जो फिल्म है इसका असली मजा है उस बस में बैठे बाकी यात्री। जी हाँ, कोई अपनी भाषा और अंदाज के साथ है, तो कोई अपनी अजीब अजीब आदतों के साथ है, कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है। और इन सब के बीच है बस के कंडक्टर खन्ना, जी हाँ, हमारे महमूद साहब। और महमूद की कॉमेडी इस फिल्म की जान है और उनका अंदाज ऐसा है कि कहानी में जब भी तनाव बढ़ता है हंसी के लिए कोई ना कोई मौका निकल ही आता है। और बस के ड्राइवर जो राजेश का किरदार है वो अनवर अली ने निभाया है, जो महमूद के भाई हैं। और इनके अलावा फिल्म में नजीर हुसैन, ललिता पवार, मुकरी मनोरमा, आगा केश्ट मुखर्जी और कई जाने माने कलाकार भी नजर आते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बस और उसमें बैठे इतने सारे कलाकारों की, तो फिर ये गाना तो बनता ही है इस फिल्म का। आइए सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा का ये एक और गाना।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की और हमारे साथ आप सब जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ कौन जुड़ा है? देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भावसार जी और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने सारी डिटेल्स हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। और देखिए, वही सब बताया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मद्रास टू पांडिचेरी का रीमेक है और 1972 में रिलीज फिल्म है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, जो बिल्कुल समझ गए हैं कि ये फिल्म है बॉम्बे टू गोवा। फिर हमारे संग है डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से, और वो भी जान चुके हैं फिल्म कौन सी है। हमारे साथ जुड़े हैं मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, सौ जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सांदी और प्रणाली देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये हमारे साथ पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और है क्षिप्रा गुप्ता। फिर है हमारे साथ वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। हमारे साथ है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और हमारे साथ है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से है अशोक कुमार सहगल। और देखिए हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये कौन है? आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, शुक्रिया। अब देखिए हमारे साथ आप लोग बने रहते हैं, अच्छा लगता है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शुक्रिया। आप सभी को एक चीज़ और भी बताऊंगी, बने रहिएगा, दोपहर 3 बजे भी आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत गोल्डन एरा की कुछ अच्छी गजलें, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, आपकी आगे की और भी मेल्स शुमार करूंगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म का

ठंडा पानी भीगी मेरी जवानी, फिर क्यों जले मेरा तन,

और यह वो दौर था जब उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ रहा था और इस फिल्म में उनका अंदाज आज के अमिताभ से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये हल्के फुल्के अंदाज में इसमें नजर आते हैं जिसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है। महमूद का अमिताभ पर भरोसा भी इस फिल्म के लिए जुड़ी बहुत सी बातों में से एक है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक चीज देखा है कि महमूद ने उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका दी और इस फिल्म में अमिताभ को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को बहुत भरोसा नहीं था कि हाँ इन्हें एक हीरो का रोल दिया जा सकता है, लेकिन महमूद ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया। और आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये बहुत बहुत दिलचस्प बात लगती है कि जिस कलाकार को आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनना था वो इस फिल्म में अपने सफर की शुरुआत कर रहा था। और बस आपको इस फिल्म का एक ऐसा गाना मैं सुनाने जा रही हूँ जो ना उषा उथुप की आवाज में है और बहुत अलग अंदाज, अलग मिजाज का गाना है। और आपने ये गाना जरूर बहुत कम सुना होगा, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, तो इसके जब हम सारे गाने आपको सुना रहे हैं तो ये गाना भी आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत अलग अंदाज का गाना।

रात चल रहे हैं उषा उत्सव को, और इसके साथ हम सुन लेते हैं हमारे कुछ दोस्तों को भी हमें क्या बोलने जा रहे हैं। हमारे साथ संदीप मक्कड़ हैं, ज्योति मक्कड़, भन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हमारे साथ झग्गर राम साहू हैं, इनके साथ हैं ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। इनके साथ हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, और इन्हें अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, शुक्रिया। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा है, अन्नपूर्णा वर्मा है, ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ। फिर हैं देवशंकर तामरिया जी, और जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया तो क्या किया, आज एक ही फिल्म में बॉम्बे टू गोवा, इस फिल्म में बस का जो ड्राइवर है वह महमूद का भाई है। बिल्कुल सही है आपने बताया, हमने भी आपको बताया, अनवर अली जी जो है वो महमूद के सगे रियल भाई हैं। और तो ये हमें लिख रहे हैं कौन, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालौद छत्तीसगढ़। और यहाँ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, और हमारे साथ हैं डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, शुक्रिया शुक्रिया। फिर हमारे संग है धर्मेंद्र चिका जी, शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया हमारे पास, इंतजार तो रहता ही है, तो आपने भी पूरी चीजें हमें बताई हैं इस फिल्म के बारे में, और शुक्रिया आपको उषा ध्रुव का गाना अच्छा लगा, सुन करके हमें अच्छा लगा। आपके साथ है कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, आप सब हैं हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से। फिर है देखिए संजय ढींगिया, नया नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। फिर हमारे साथ है जी हाँ डीबी राणा जी, मैंने उषा उत्थुप जी का गाना ही आपको सुना रही हूँ। फिर हमारे साथ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल।

शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए अब हम इस फिल्म के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम आपको बस आखिरी का गाना सुना सकते हैं। तो अब देखिए इस फिल्म की जो यात्रा है ना, वो हमें एक पुराने दौर पे लेके जाती है, जिसमें अगर हम आज भी बात करते हैं तो हमें महमूद याद आते हैं, बॉम्बे टू गोवा की अगर हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अमिताभ की तो उनकी शुरुआती दौर याद आता है। फिर सबसे बढ़कर याद आती है वो बस जिसमें ये सफर हुआ था। तो रास्ते में इस पूरे सफर में हमें मिले अमिताभ बच्चन के जो रवि कुमार हैं, अरुणा ईरानी की माला से हमारी मुलाकात हुई, शत्रुघ्न सिन्हा शर्मा के रूप में हमारे साथ रहे और खन्ना के रूप में महमूद हमारे साथ रहे। हमारे साथ कौन मिले? जी हाँ, इस सफर में मिले आर डी बर्मन अपने गीतों के साथ, राजेंद्र कृष्ण अपने बोलों के साथ, अपने संगीत के साथ आर डी बर्मन और अपने बोलों के साथ राजेंद्र कृष्ण। और हमारे साथ बहुत से किरदार ऐसे भी रहे जिन्होंने बकायदा अपना साथ हमारा निभाया। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ सफर इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि रास्ते में जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और मजेदार लगती है। तो बस चलते चलते आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनाने जा रही हूँ और इस गाने के साथ ही इस फिल्म का सफर यहीं पर खत्म भी होता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ आप ये गाना सुन रहे हैं उनकी आवाज से। देखिए आपको इस सफर में लेकर चली थी मैं जी, हाँ, बॉम्बे टू गोवा के सफर में आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सुना ली। तो अब पर मुझे दीजिए अनुमति आपसे दोपहर 3 बजे फिर मिलूंगी मैथिली मेलोडी के साथ। तब तक नमस्कार, खूब अच्छे रहिए, खूब मस्त रहिए।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: नहीं समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।
1: नो
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।

0: रही है कि उसकी स्कीमों के फायदे अकलियती तबकों तक दयानतदारी के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग अनाज और दीगर लाजमी अशिया मुफ्त हासिल कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शिमाली फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर के मजालता में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ मार गिराने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सताइश की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कोर की तेज रफ्तार, दुरुस्त और पेशावराना कार्रवाई की तारीफ की। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामा निगार ने बताया कि यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के करीबी तालमेल से चलाया गया था, जिससे इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में एजेंसियों के दरमियान मुश्तरका तालमेल की मजबूती का इजहार होता है। गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में तरमीम के बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनाकिद होगी। ये कमेटी बिल की शिकों के बारे में वजारत दाखिला के नुमाइंदों से जानकारी हासिल करेगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में तरमीम के 2026 के इस बिल को 12 अगस्त को मंजूरी दी थी और इसे मजीद जांच पड़ताल के लिए एक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के हवाले कर दिया था। इस बिल में गैर मुल्की अतियात से मुतालिक 2010 के कानून में इस मकसद से तरमीम की बात कही गई है कि गैर मुल्की अतियात का इस्तेमाल मजीद शफाफियत और जवाबदही के साथ किया जाए। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस राबते में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने और तरबियती राबतों को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सलाहियत साजी को मजबूत करने पर भी तवज्जो दी गई। अपनी आमद पर जनरल धीरज सेठ को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आलमी दर्जाबंदी की एजेंसी मूडीज ने रवा माली साल के लिए अपनी पेशगोई में भारत की असल GDP शरह तरक्की के अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% बताया है, जबकि पहले की पेशगोई में रवा माली साल के लिए यह शरह 6% बताई गई थी। एजेंसी ने बताया कि पेशगोई में किए गए इस इजाफे से मगरबी एशिया में तनाजे के पस मंजर में आलमी माशी बहरान के बावजूद भारतीय मीशत की मजबूती का पता चलता है। एजेंसी ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत G20 की दीगर सभी मीशतों के मुकाबले तेज तर तरक्की करता रहेगा। मूडीज ने कहा कि भारत की असल GDP की शरह तरक्की 2026 के पहले निसफ में साल ब साल 8.2% तक पहुंच गई है, जबकि 2025 में यह 7.3% थी। भारतीय ट्रैकबॉल की डेब्यू करने वाली खिलाड़ी किम्सी जोकिम डिसूजा ने आज सुबह खवातीन के सिंगल्स में 2 कामयाबी हासिल करके जापान में जारी आईची नागोया एशियाई गेम्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। किम्सी जोकिम ने ग्रुप ए मैच में जापान की युइना साकामोतो के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए सख्त मुकाबले में 2-1 से कामयाबी हासिल की। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने कम्बोडियाई कोएमयिन डीवाई को ग्रुप ए मैच में 2-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने भूटान के तरक्याती मकासद और तरजीहात के लिए भारत की मदद के मौकफ को दोहराया। दोनों मुल्कों ने 2 तरफा तआवुन और बाहमी अहमियत के मामलों का जायजा लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय फजाइया को LCA तेजस और STT-40 तरबियती तैयारी सौंपेगा। रेलवे के महकमे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चांदोर के दरमियान नई रेल लाइन की तामीर के लिए 493 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत 2 जैश दहशतगर्दों को मार गिराया। आलमी दर्जाबंदी की एजेंसी मूडीज ने रवा माली साल के लिए अपनी पेशगोई में भारत की असल GDP शरह तरक्की के अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% बताया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HDT-40 trainer aircraft.

0: सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यात्सुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस, HT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटवन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। यह रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और

0: बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
1: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गाँव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
2: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
0: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
3: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।

वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी। मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर। आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गाँव में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है। करता न वहाँ से लकड़ी उठाता और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी

0: से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी सीआईटी एनसीआरटी को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीआरटी बुक्स पीडीएफ और एनसीआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: राजा है, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त।

0: that.
1: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
2: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
3: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता। उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
4: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी न कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।
3: उन्नीसवीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
4: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
3: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
4: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की माँ ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की माँ ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
5: पानी ले आ रहा
6: है?
4: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
7: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
4: न कमाता है, न धमाता है, ऊपर से झूठ जमाता है
7: दीदी।
4: अरे इनको तो
7: दीदी।
8: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
7: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
8: अरे
7: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
8: हाँ हाँ,
7: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर
8: क्या?
7: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई।
8: अरे?

0: साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
1: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
2: जी दीदी।
1: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
2: बिल्कुल चलेंगे,
1: आज इसके साथ हो रहा है कल किसी के भी साथ हो सकता है।
2: जी दीदी।
3: जी दीदी,
2: हम सब तैयार हैं।
4: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
5: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
4: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थीं कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
5: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
4: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
5: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
4: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थी।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। वी हैव गैदर्ड हियर टू फैसिलिटेट डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood.

0: उसे एक फरार लम्हे भर के लिए मिलता है, जिसका तस्करा भी आपने किया था कि लोग चाहते हैं कि वो इस्केपिज्म तो मिले। तो उस एतबार से इन सारी बातों के पेश नजर क्या एक मेयार कोई है हमारे इंडस्ट्री का? यानी जो शख्स जिसके हाथ में इतना पावरफुल इतना ताकतवर मीडिया है, तो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने मुल्क के लोगों के जहनी मेयार को पेश नजर रखे और मुकदम रखे।
1: बात यह है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में गिनती के कुछ 20 प्रोड्यूसर्स होंगे जो फिल्म बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो फिल्म बनाना चाहते हैं, वो कभी कभी कुछ अच्छी फिल्में बना देते हैं, कभी कभी कुछ एस्केपिस्ट फिल्म बना देते हैं। बाकी जितने प्रोड्यूसर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो सब मशरूम प्रोड्यूसर्स हैं जो रात को
0: उगाए हैं,
1: सुबह को पिक्चर बनाते हैं और रात को गुल हो जाते हैं। अब किसी ने कुछ पैसा बना दिया कंस्ट्रक्शन में, वो आ गए फिल्म लाइन में पैसा लगाने। उनको मिल गया कोई आदमी, उन्होंने कहा साहब मैं बड़ा जबरदस्त प्रपोजल बना देता हूं, धर्मेंद्र को ले आता हूं, इसको ले आता हूं, उसको ले आता हूं। कटिए साहब कितने लगेंगे? कह रहा वो 5-6 लाख जो आप लाए उससे अपना काम स्टार्ट तो कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे, पैसे दे देंगे। अब वो पार्टी होता है, उन पैसों में पार्टी कराते हैं, वो साइनिंग अमाउंट देते हैं आर्टिस्ट को और थोड़ी सी शूटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता नहीं क्योंकि मार्केट बहुत टाइट चल रही है। अब वो बेचारा फंस गया पैसे डाल के, वो कहीं कहीं से और पैसे जमा करके लाता है ताकि वो जो अटके हुए पैसे वो निकल आए। तो ऐसे कितने लोग फंस चुके हैं इस इंडस्ट्री में, और ऐसे कितने लोग आके पैसा लगा के फिल्म बना के फिल्म फ्लॉप हो गई, चुपचाप से घर चले गए। आप स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, हिंदुस्तानी फिल्मों में 80% जो फिल्म बनते हैं वो टोटल फ्लॉप्स हैं। बाकी 20% में से 15% अपना कॉस्ट जो है रिकवर कर लेते हैं, 3% हिट है और 2% सुपरहिट है। इसके बावजूद लोग आके पैसा लगाते हैं इस इंडस्ट्री में ये सोच के कि भाई मेरी चल गई तो मेरी चांदी हो जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है पिक्चर चलेगी आपकी। और फिर वो भेड़चाल भी एक चलता रहता है, एक ने शोले बना दी तो 10 शोले बन रहे हैं, एक ने जय संतोषी मां बना दी तो जय मां लक्ष्मी मां सत्यनारायण की मां पूजा, सब लाइन से बनाते जा रहे हैं पिक्चर उसी किस्म की और कोई नहीं चलती।
0: एक तासुर आपकी इस बात से ऐसा लगता है हमारे सुनने वालों को भी मिला होगा कि जैसे ये इंडस्ट्री एक कोई बहुत बड़ा जुआ खाना है।
1: सही बात,
0: जहां आकर के पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद 10 के 10 लाख हो जाए।
1: सही बात है, और बात ये इसलिए हम क्वालिटी फिल्म्स नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को फिल्म बनाने से कोई मतलब है ही नहीं, इन लोगों को पैसे बनाने से मतलब है। तो इसलिए क्वालिटी तब तक नहीं इंप्रूव होगा जब तक कोई कॉन्शियंशियस या अकलमंद प्रोड्यूसर आएगा जो पैसे को साथ साथ कुछ अच्छा बनाना चाहेगा, अच्छी फिल्म बनाना चाहेगा जिसमें कोई मैसेज हो, जिसमें कोई एंटरटेनमेंट भी साथ में हो। लेकिन
0: जनरल ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इंडस्ट्री में जो बजटिंग है, बजट इसका कम हो फिल्म बनाने का, होता यह है कि जब लाखों बल्कि कभी कभी करोड़ों में बजट पहुंचता है तो जाहिर है कि जो आदमी इस दर्जा सरमाया लगा रहा है तो उसे ये फिक्र तो होगी ही कि उसका सरमाया वापस आए। अगर छोटे बजट की फिल्म, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है सबूत, आप भी जानते हैं कि जब जब छोटे बजट की कोई फिल्म बनी है और किसी समझदार आदमी ने बनाई है तो वो बहुत अच्छी फिल्म हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने मियारी फिल्में नहीं बनाई हैं, बहुत अच्छी फिल्में हमारे यहाँ बनी, बहुत तादाद कम है उनकी बिलाशुबा, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। और कोई उन अच्छी फिल्मों में आप कोई ऐसी फिल्म नहीं बता सकते जिसमें करोड़ों रुपए का बजट हो।
1: नहीं, ये सब फिल्में जो आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं ये सब लो बजट में बनते हैं, 15 और 20 लाख के बीच में, और इनका जो इन्वेस्टमेंट इतना कम होने की वजह से रिकवरी भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा टेरिटरी है, 5 टेरिटरी में डिवाइड है। उस 5 टेरिटरी में आप अगर पिक्चर को बेचें तो पूरे नहीं तो करीब 75% तो आप रिकवर कर लेंगे, फिर ओवरसीज है। तो ऐसा करके पैसा कभी आप हार ही नहीं सकते लो बजट में, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। बाकी लोग जो हैं, जो मेजोरिटी हैं, उनको तो बहुत हवस है पैसा बनाने का, तो उनको तो ये रियलाइज नहीं करता, वो सब भेड़चाल वाले हैं। वो जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कहेंगे आप पिक्चर तो बना लिए लेकिन इसमें तो कोई स्टार है नहीं, मैं थिएटर में लोगों को कैसे घसीट के लाऊंगा। आप ले आइए कोई नाम उसमें लगा दीजिए, कोई बड़ा नाम, तो फिर कोई फायदा हो जाएगा, मैं किसी को बुला सकता हूँ, लोग आ जाएंगे पिक्चर देखने। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉन स्टार्स को लेंगे, जैसे कि कोई स्टार ना हो, अब माशाल्लाह नसीरुद्दीन शाह का नाम हो गया है, लेकिन एक जमाने में उसको भी तो कदर नहीं, तो 8 फिल्म एक्टर है। लेकिन आज शुक्र है इतने नेशनल अवार्ड जीत के, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने के बाद इतना नाम हो गया उसका कि ठीक है लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और ये जो मूवमेंट था, ये न्यू वेव मूवमेंट या आर्ट

0: में, ये धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपोजर मिल रही है टेलीविजन पे आजकल दिखाया जा रहे हैं, और वो लोग जिनको कभी ये मौका मिला ही नहीं था ऐसी पिक्चर देखने, वो टेलीविजन के जरिए देख पा रहे हैं ऐसी फिल्में और अप्रिशिएट कर पा रहे हैं।
1: सही।
0: तो ये जो बड़े बजट की फिल्म है, ये पब्लिसिटी में इनका बहुत होता है, बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी करते, क्योंकि इनका बजट होता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, कभी बड़े बड़े पिक्चर, फिर आपके स्टार हैं और उसको बनाने में 2 साल लग जाते हैं, अब 2 साल में इंटरेस्ट चढ़ता रहता है उस पर, और यहां पे बनाते हैं तो 40-50 दिन में बड़ बड़ एक साथ शूटिंग करके खत्म कर देते हैं पिक्चर को और तैयार कर लेते, उसी वजह से बजट डाउन रहता है।
1: अच्छा, तो ये जो अभी आपने तस्करा किया कि टेलीविजन और वीडियो का जो मामला अब हुआ है शुरू, टेलीफिल्म्स हमारी कई एक बहुत अच्छी देखे बनी, छोटे बजट की जाहिर वो फिल्में हैं और तकनीकी एतबार से अच्छी फिल्में थी और वैसे भी बहुत अच्छी फिल्में थी, तो ये अगर सिलसिला शुरू हो गया और मकबूल आवाम में होता चला गया, तो ये बड़े बजट की फिल्मों में और ये मल्टी स्टार फिल्में जो हैं इनके ऊपर कैसा असर पड़ेगा आपके ख्याल में?
0: देखिए, अब शाम को आप टेलीविजन खोलें 9 बजे के बाद तो नेशनल नेटवर्क में काफी सीरियल्स आते रहते हैं शाम को, तो ये फैक्ट है कि 9 बजे का जो शो है सिनेमा का, ये मार खा चुका है ऑलरेडी, और आगे चल के 3 और 6 का शो भी मार खाएगा। अगर कोई फिल्म लगी हुई है और शाम के वक्त मैं घर आता हूं थका हारा काम से या कहीं से भी, और नहा धोकर मैं चाहता हूं कि मैं बैठूं रिलैक्स करूं, मैं बैठ के अपने टीवी पे सीरियल देखूं या कोई वीडियो फिल्म देखूं, बजाय ये कि मैं थिएटर में जाऊंगा, भीड़ भाड़ होगी, उतना खर्चा होगा, जाना आना वहां पे, फिर बच्चे साथ में गए तो उनको खिलाना, पर मैं घर में अपने आराम से बैठ के अपने खाओ पियो जो मर्जी करो, बैठे हैं अपने घर में। और ये जो है फिल्म इंडस्ट्री को बहुत धक्का पड़ने वाला, बहुत बड़ा धक्का पड़ने वाला इसकी वजह से, क्योंकि इनको अभी अपने फिल्में चेंज करनी पड़ेंगी, काफी साल हो गए पब्लिक को
1: झेलते हुए।
0: हाँ, बॉय मीट्स गर्ल, वो एक कहावत है ना कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, और अब ऑल द पीपल आर गेटिंग वेरी स्मार्ट,
1: हमेशा सबको बेवकूफ नहीं बना सकते।
0: अब लोग होशियार हो गए हैं कि हम क्यों जाए वही देखने फॉर्मूला, क्योंकि है सब्जेक्ट वही है, सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती काम कर रहा है या धर्मेंद्र कर रहा है या अमिताभ कर रहा है, लेकिन स्टोरी वही है, वहां पे माँ जिंदा थी या पे भाई जिंदा है, वहां पे बहन जिंदा थी या बेटा जिंदा, ऐसे कुछ थोड़ा चेंजेस, नाम माँ घनश्याम था या दिलीप हो गया, ऐसी इसलिए भी यही है, लेकिन मैटर चेंज नहीं होता है, मैटर वही का वही है, गाने वाने फाइट रेप वो सब चल रहा है। तो ये लोग घड़ी घड़ी देखने नहीं जाएंगे अब क्योंकि क्यों जाए, बैठ के घर में आराम से हम सीरियल देख लें या टेलीफिल्म देखें। तो अब जैसे अमेरिका में हुआ है टेलीविजन के एड, लोगों को अब अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी अगर उनको सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में, फिल्म बनाना है तो।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे सोसाइटी में वीडियो का और टेलीफिल्म वगैरह का, तो ये एक खुशगवार तब्दीली लाने का मुद्दा साबित होगा आपके ख्याल में?
0: जरूर, एकदम चेंज होगा। आप देखिए इंडस्ट्री का जो दौर है, मेरे ख्याल से विद इन 5 ईयर्स 5 साल के अंदर ही हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी काफी हिले हुए हैं जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर दौड़ रहे टीवी सीरियल बनाने, क्योंकि रियलाइज करते हैं कि इतना बड़ा मार्केट उनको कहां मिलेगा।
1: अच्छा जलाल, अब एक सवाल ये करें आपसे कि आप हमारे इतने मकबूल कॉमेडियन आगा साहब के साहबजादे हैं, कॉमेडी के बारे में आपकी तशरीह क्या है? फिल्मी जो कॉमेडी हमारे यहाँ आज तक रही है और जितने भी कॉमेडियंस रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कॉमेडी डिफाइन कैसे करेंगे आप कॉमेडी को?
0: उर्दू में बफूनरी का क्या तर्जुमा होता है? बफूनरी
1: कुछ बंदर जैसी हरकतें, कुछ
0: ठीक है,
1: नकल करना
0: है। और हमारे हिंदी फिल्म कॉमेडी ज्यादातर बंदर जैसे तरीके, क्या बोलते हैं, आज तक बहुत कम कॉमेडी बनी है हिंदुस्तानी फिल्मों में, और फिल्म इंडस्ट्री का कहना है कि कॉमेडी नहीं चलती। तो मैंने उनसे एक दिन सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए आप हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में एक इंसान बताइए मुझे जो हंसने का शौक नहीं रखता,

0: ये गलत बात है कि कॉमेडी नहीं चलती। आपने कॉमेडी बनाते बनाते बीच में जाके आपने या एंड में जाके कॉम्प्रोमाइज कर दिया, चेस वेस लगा दिया एंड में, एकदम टिपिकल फॉर्मूला फिल्म जैसे एंडिंग कर दी, तो लोग मानने वाले नहीं है। लेकिन जहां पे जेन्युइन कॉमेडी बनी है, जैसे चलती का नाम गाड़ी, प्यार किए जा, पड़ोसन, ये चली है क्योंकि लोगों को बड़ा मजा आया। अंगूर अंगूर भी चली और खट्टा मीठा और पुरानी ऐसी दो तीन और बनी थी ऋषिदा ने जो बनाई थी। लेकिन जेन्युइन कॉमेडी अगर बनाया जाए डेफिनेटली चलेगी, बिकॉज लोगों को हंसने का शौक है।
1: सिचुएशनल कॉमेडी हो
0: लेकिन ये बफूली, ये बंदरे वाले चाले जैसे रजनीनाथ करते हैं और कभी कभी दूसरे जो कॉमेडियंस करते हैं, ठीक है नो, एक तरीके से एक फिल्म में देख लिया, दो फिल्म देख, ठीक है, लेकिन हर फिल्म में वही कॉमेडी कर रहे हैं नो, मतलब आप एक्सेप्ट करते हो नहीं तो अभी छलांग मारेगा आरोप में, दोनों पैर कहीं उड़ाएगा, फिर वापस नीचे जमीन पे आ जाएगा, तो मानो मैं आपको करने वाला है। जैसे मेरे फादर का वो लेट रिएक्शन था, वो लेट रिएक्शन कभी कभी करते थे, लेकिन वो जब करते थे वो श्योर लाफ्टर आता था, बिकॉज वो हर पिक्चर में एक बार कहीं ना कहीं करते थे। आज तक मेरे लोग मिलते हैं, कहते यार जरा एक बार वो करके दिखा दो, तुम्हारे फादर जैसे करते, मुझसे नहीं होता, वो उनकी टाइमिंग थी, उन्होंने सेट किया होता। मैं कॉमेडी अक्सर वैसे स्टेज पे करता हूं, मुझे मजा आता है क्योंकि लाइव रिएक्शन मिलता है ऑडियंस से।
1: मसलन क्या करते हैं आप स्टेज पे?
0: कुछ ना कुछ, कुछ
1: किसी की नकल
0: नहीं, नकल वकल नहीं करता मैं, बड़ा ओरिजिनल आदमी, मैं नकल वकल किसी नहीं करता।
1: कोई ओरिजिनल चीज?
0: मैं ओरिजिनल चीज करता हूँ, मैं कुछ गाने गाता हूँ, कुछ पैरोडी करके गाने गाता हूँ, तो मजा आता लोगों को।
1: एक कुछ सुना दें जरा सा, क्या क्या मसलन क्या?
0: अरे नहीं भाई, मैं
1: थोड़ा सा,
0: मेरा गला ठीक नहीं है इस वक्त।
1: नहीं गाना, वो गाना थोड़े, वो तो पैरोडी है ना।
0: नहीं पैरोडी वैसे क्या है कि मैं वैसे जब फॉरेन जाता हूँ कुछ शो वो करने, तो वहां पे मैं कोई हिंदी गाना हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको गाता हूँ, तो काफी
1: मजा आता है।
0: जैसे कि एक मसलन एक गाना है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो मैं कहता हूँ कि कभी कभी मैं आप लोगों के लिए ये गाना गाने वाला हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैंने ये हमारे हिंदी फिल्म के हीरो जो है उनका जो दिल है वो सोचता है और दिमाग धड़ धड़ धड़ धड़ करता है, क्योंकि उनके दिल में ख्याल आता है, अक्सर लोगों के दिमाग में ख्याल आता है।
1: अच्छा,
0: तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता करके उसका फिर ट्रांसलेट करता हूँ कि समटाइम्स समटाइम्स इन माय हार्ट ए थॉट कम्स। तो उससे मजा आता है लोगों को, तो क्योंकि वो लिटरली जब आप ट्रांसलेट करें तो उसमें
1: पता लगे दिमाग का काम दिल कर रहा है।
0: हाँ देखिए ना कि दिल जो है वो सोच रहा है और दिमाग धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ कर रहा है, तो ऐसे कुछ है। लेकिन कॉमेडी मैं इंशाल्लाह, मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है निर्वाण, और ये फिल्म लोग काफी चौंक जाते हैं देख के, क्योंकि बहुत ही सीरियस फिल्म है और लोग सोचते हैं कि जलाल आगा को तो सोचा था कॉमेडी बनाएंगे ना, लेकिन ये काफी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है और मैंने कुछ 10 साल इंतजार किया इसको बनाने के लिए और फिर मैंने उसको अल्टीमेटली बनाया है।
1: ये इंतजार क्यों किया?
0: तो लोग सोचते थे मजाकी आदमी यार ये कैसे पिक्चर बनाएगा, यू नो कुछ लोग सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है, मैं टिका रहा लगा रहा और अल्टीमेटली आखिर में मैंने बनाया इस फिल्म को, और फिल्म बहुत अप्रिशिएट हुई है जहाँ जहाँ मतलब लोगों ने देखी है, लेकिन अभी रिलीज नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह इस साल रिलीज हो जाएगी। लेकिन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं बनाऊंगा वो कॉमेडी होगी, और आप देखेंगे कॉमेडी क्या होती है, इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा सब।
1: हम बड़ी बेताबी से उसका इंतजार करेंगे और खुदा करेगा आपको कामयाबी मिले उसमें, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हर आदमी का शौक ही नहीं, मैं कहता हूँ हर आदमी की फितरत है हंसना, और आज के इस दौर में बड़ी जरूरत,
0: बहुत
1: है इसकी, और हमारे फिल्म साजों को जिनके हाथ में ये मीडिया है उनको ये बात बड़ी संजीदगी से सोचनी चाहिए। लेकिन कुछ आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर अपने आप में ऐसे हुए हैं हमाया मिजाहिया कि सिचुएशन कुछ भी रही हो, फिल्म कैसी भी रही हो, जब वो होते उनका नाम होता था, मसलन जॉनी वाकर,
0: मसलन महमूद
1: उनका नाम होता था, तो लोग ये कहते थे कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, चलो चलें देखने।
0: इस मामले में मेरे ख्याल से महमूद से बढ़कर कोई कॉमेडी नहीं था, इस वजह से महमूद में एक क्या कहते हैं ताकत थी, या क्या कहते हैं जो कोई भी हिंदुस्तान का आदमी देख ले उसको ऑब्जर्व करता था, वो अच्छी तरह से गौर से देखता था, और वो रिप्रोड्यूस कर सकता था एग्जैक्टली, जैसे मसलन हैदराबादी, मसलन पड़ोसन में उसने तमिल मास्टर पिल्ले का रोल किया था।

0: प्यार से बोलता था मास्टर पिल्लई और उसने बाकायदा चुटिया रखी थी इतनी कुछ 2 महीने की,
1: वही मैनरिज्म
0: पूरा, वैसी लुंगी पहनना, वैसे सब कुछ। महमूद में ये चीज थी जो मेरे ख्याल से आज तक किसी कॉमेडियन में नहीं था, मेरे फादर में भी बात नहीं थी जो कि भाई किसी को कैरिकेचर करे या किसी का बोलने का ढंग उठाए, उसके बात करने का ढंग, उसके खाने का ढंग, उसके चलने का ढंग, सब कुछ। ये पावर जो है ये महमूद में थी और मुझे महमूद इस वजह से बहुत पसंद आता था क्योंकि वो किसी भी हिंदुस्तान के कैरेक्टर में घुल जा सकता था और रिक्रिएट कर सकता था उसको। इसलिए उससे बड़े बड़े स्टार डरते थे, बड़े बड़े हीरो लोग उसके सामने काम करने डरते थे, खा जाता था उनको सीन में। इसी वजह से बेचारे को धीरे धीरे करके आउट कर दिया लोगों ने क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते थे वो जो सीन में खा जाए उनको हीरो लोगों को। एक ही कॉमेडियन था जिसका एंड महमूद करके आता था क्योंकि उसका ड्रॉ था बहुत बड़ा ड्रॉ, जैसे आप कह रहे थे जॉनी वॉकर साहब का भी था काफी, लेकिन मेरे ख्याल से महमूद के सामने अपने रिसेंट मतलब 35 साल महमूद के सामने आज तक कोई कॉमेडियन नहीं आया, इतना ग्रेट कॉमेडियन था वो।
1: जहरलाल जब आप तरबियत लेकर के वहां से इंस्टीट्यूट से आपने बताया आए तो लोगों को ये तवक्को रही होगी कि आगा साहब के बेटे हैं तो एक शायद कॉमेडियन इंडस्ट्री को और अच्छा मिले। आपने किस तरह शुरुआत की अपने कैरियर की?
0: ऐसा हुआ कि जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से आया तो मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा आपने मुझे पढ़ाई वढ़ाई सब करा दिया, अब आप प्लीज अपना काम करिए और मुझे अपनी जिंदगी बनाने दीजिए, आपने बहुत कुछ कर लिया जो करना था कर दिया। तो मैं जाता था फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में, बहुत से ऑफिस है फिल्म प्रोड्यूसर्स की वहाँ पे, तो मैं अपना नाम भेजता था, मैं चला अलावा कब बैठने बोलूँ तो मैं बैठता था आधा घंटा पौन घंटा कभी ना, फिर बुलाते थे अंदर, कहा जी हाँ मैं साहब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से आया हूँ मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो चेहरा देखे फिर वापस उसने कागज देखा चला अलावा, कहे तुम आगा साहब के लड़के हो? मैं जी हाँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ऐसा कोई जरूरत नहीं, मैं आपने कहा वेट करिए मैं वेट कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसी क्या, आप आगा साहब के लड़के हो? मैंने कहा सर आगा साहब लड़का मैं घर पे हूँ, यहाँ पे तुम्हें चला लाओ काम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा वो कॉमेडियन का रोल है हमारे इसमें आप करिए। अब क्योंकि मैं कॉमेडियन का लड़का था मुझे सिर्फ कॉमेडी दी जा रही थी, इससे मैंने रिबेल किया, मैंने कहा अगर मैं मोची का बेटा हूँ तो आप मेरे को मोची बनाएंगे इसका क्या मतलब है?
1: सही
0: है, अगर मैं कोई क्या बोले डॉक्टर का बेटा हूँ जबरदस्ती आप मेरे डॉक्टर बनाएंगे, मुझे डॉक्टर नहीं बनना भाई जबरदस्ती है, तो मैंने नहीं करेंगे कॉमेडी, तो नहीं करता था मैं कॉमेडी, बड़े ऑफर मिले मैं नहीं करूंगा मैंने, तो उससे मेरा नाम खराब होता है, अपने आप को बहुत समझता है, क्या समझता है अपने आप को। तो एक दिन मेरे फादर ने मुझे रेकमेंड किया कहाँ पे साउथ इंडियन प्रोड्यूसर के पास, मैं पहुंचा वहां पे फादर बैठे हुए थे, क्या सर ऐसा रोल है? मैं ठीक है सर, लेकिन एक बात है कि हाँ मैंने मेरे फादर ने रेकमेंड किया, कहा हाँ माफ कीजिए मैं नहीं कर सकता। तो बड़ा चौंका उसने पलट के फादर से पूछा ये क्या है व्हाट इज ही सेइंग आगा, तो फादर ने कहा गिरा जाओ भाव ऐसे, मैंने आपसे कहा था मैंने आप प्लीज रेकमेंड मत की। तो उस दिन से आज तक उन्होंने किसी को रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन कॉमेडी मैंने बाद में की करीब 1977-78 एक 10 साल के बाद, क्योंकि फिर शादी हो गई थी बच्चा हो गया था कुछ पैसों की जरूरत पड़ती थी, चलो मैंने कॉमेडी भी कर लो यार क्या फर्क पड़ता तो पैसे बना लो बच्चों के खाते। लेकिन अब मैंने एक्टिंग बहुत कम कर दिया, मैं सिर्फ खानदान सीरियल था उसमें था मैं, और कुछ एक दो करता हूँ, मैं ज्यादा एक्टिंग नहीं करता, मुझे शौक नहीं है अभी एक्टिंग करने का, कोई मजा नहीं आता है कुछ।
1: अच्छा एक खासा अहम रोल आपने किया था एक बहुत ही कामयाब और बड़ी आला दर्जे की फिल्म गर्म हवा में,
0: क्या खूबसूरत
1: वो रोल आपको कैसे मिला था?
0: देखिए 1968 में मैंने अपना एडवर्टाइजिंग फिल्म बिजनेस शुरू किया था जहाँ मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज और ये एड फिल्म्स बनाता था, तो MS सत्यू जिन्होंने फिल्म बनाई ये भी करते थे वही काम एडवर्टाइजिंग फिल्म्स, भाई सर्वाइवल के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता, तो उन्होंने पकड़ा मुझे कहा करो मैं हमारी फिल्म, मैंने कहा करेंगे, तो उन्होंने ठीक है। तो इस वजह से हम पहुंचे आगरा
1: जी,
0: और आगरा में पूरी फिल्म की शूटिंग की, और मैं इतना खुश हुआ जब मैंने फिल्म देखी, इतनी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 10 अगर आप बेस्ट फिल्म्स ले लें उनमें से गर्म हवा डेफिनेटली पहले 5 में आना चाहिए, इतनी खूबसूरत फिल्म थी।
1: बिलाशुबा बहुत अच्छी फिल्म थी वो। अच्छा उसके बाद कोई और अहम रोल किसी फिल्म में आपने?
0: मैं ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के 3 फिल्में की थी, बम्बई, रात की बाहों में, 7 हिंदुस्तानी और 2 बूंद पानी, और तीनों में बहुत खूबसूरत रोल अब्बास साहब ने मुझे दिए थे। फिर मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था सारा आकाश, ये जितने न्यू वेव फिल्म 60s में बने उनमें सब में मैंने काम किया था, बिकॉज इसलिए कि मैं इंकरेज करना चाहता था ऐसे फिल्में, और मैं जब भी फिल्म इंस्टीट्यूट वापस जाता था एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर, तो मैं हमेशा उनसे कहता था, मैंने कहा आप लोग ये हमेशा याद रखें कि आप लोग ट्रेंड हैं, ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं, ट्रेंड एक्टर्स हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप लोग अलग रहें थोड़ा सा, लेकिन नहीं साहब सबको हीरो बनना है सबको स्टार बनना है, तो वापस आके सब वही करते थे।

सुदेश भोसले और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे वीरू दादा फिल्म का ये नगमा। फिल्मी नगमों की प्रोग्राम की अगली पेशकश वीर दादा फिल्म का नगमा। आवाज है लता मंगेशकर उदित नारायण की, नगमा निगार जावेद अख्तर, मौसीकार मदन मोहन।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो, अरे रानी माँ से मुझको भी ममता।

किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म थी मिस्टर इंडिया। और सुनिए जानी दुश्मन फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

साजन फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। मौसीकार थी नदीम शरवन। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 71 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

जी आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के तरक्याती मकासद और तरजीहात के लिए भारत की मदद के मौकफ को दोहराया। दोनों मुल्कों ने दो तरफा तआवुन और बाहमी अहमियत के मामलात का जायजा लिया। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली की उस करारदाद के हक में वोट दिया है जिसमें न्यूयॉर्क में असेंबली के आला सतह के इजलास से फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को खिताब करने की इजाजत देने की बात कही गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय फजाइया को LCA तेजस और STT-40 तरबियती तैयारी सौंपेगा। आलमी दर्जाबंदी की एजेंसी मूडीज ने रवा माली साल के लिए अपनी पेशगोई में भारत की असल GDP शरह तरक्की के अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% बताया है। यूरोपीय यूनियन मिसाइल और ड्रोन हासिल करने के लिए यूक्रेन को मजीद 3 अरब 30 करोड़ यूरो फराहम करेगा। और जापान में भारत की ट्रैकबॉल खिलाड़ी क्यूजे डिसूजा, जिन्होंने पहली बार एशियाई गेम्स में हिस्सा लिया है, सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के तरक्याती मकासद और तरजीहात के तई भारत की तरफ से मदद के अजम को दोहराया है। 16 से 18 सितंबर तक भूटान के अपने सरकारी दौरे में डॉक्टर जयशंकर और भूटान के उनके हम मनसब लियोम्पो डीएन धुंगेल ने दो तरफा तआवुन के तमाम पहलुओं, नीज दो तरफा अहमियत के हामिल इलाकाई और बैन अक्वामी उमूर का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने खसूसी और कसीर जहती भारत भूटान शराकत दारी को मजबूत बनाने के अमल में की गई पेशरफ्त को सराहा। डॉक्टर जयशंकर और भूटान के उनके हम मनसब ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह और आगाज किया। भारत ने 54 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी भूटान की हुकूमत के हवाले की हैं। वजीर मौसूफ ने 500 किलोवाट के लुनाना पनबिजली प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 5 मार्च 2026 की तवानाई शराकत दारी पर मुश्तरका विजन पर अमल दरामद के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। दोनों वजीरों ने भूटान में तवानाई के प्रोजेक्टों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के किस्तवार रियायती कर्जे से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का भी खैर मकदम किया। उन्होंने भूटान में पनबिजली प्रोजेक्टों में भारतीय कंपनियों की सरगर्मियों का भी खैर मकदम किया। वज़रा ने UPI पर मबनी सहूलत का भी खैर मकदम किया जिससे भूटान के बाशिंदे मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए भारत में डिजिटल अदायगियां कर सकेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने अपने दौरे में भूटान के शाह जिगमे खेसर नामगेल वांगचुक और भूटान के वजीर आजम डी टे टोबगे से भी मुलाकात की। बांग्लादेश के वजीर

आजम तारिक रहमान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम रहमान ने वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी और उनकी अच्छी सेहत और भारतीय आवाम के तई उनके वक्फ खिदमत के आला जज्बे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने बांग्लादेश के वजीर आजम के पैगाम का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश में भारत के हाई कमीशन ने इस पैगाम को अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया है। इससे पहले बांग्लादेश के वजीर आजम के दफ्तर ने भी वजीर आजम मोदी के फोटोग्राफ के साथ एक ग्रीटिंग कार्ड अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली की उस करारदाद के हक में वोट दिया है जिसमें फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क में असेंबली के आला सतह के इजलास से वीडियो के जरिए खिताब करने की इजाजत देने की बात कही गई है। इससे कबल अमरीका ने उन्हें न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। इस करारदाद को 152 वोटों की जबरदस्त हिमायत से मंजूर कर लिया गया जबकि सिर्फ अमरीका, इसराइल और पैराग्वे ने इसकी मुखालफत की। चार दीगर मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे टेमी ब्रूस ने फिलिस्तीन पर दहशतगर्दी को तर्क न करने का इल्जाम लगाते हुए वीडियो खिताब की मुखालफत करने को सही ठहराया। उधर फिलिस्तीन के मुस्तकिल मुशाहिद रियाज मंसूर ने फिलिस्तीन के साथ अमनो सलामती के साथ रहने के इसराइल के हक के तई अपने अहद को दोहराया। चीन और रूस ने भी महमूद अब्बास को वीजा न दिए जाने पर अमरीका की नुक्ताचीनी की। इन दोनों मुल्कों का ये कहना था कि समझौते के तहत अमरीका पर उन्हें वीजा देने की जिम्मेदारी आयद होती है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में भारतीय फजाइया और पवन हंस को HAL प्लेटफॉर्म सौंपने की तकरीब में शिरकत करेंगे। हवाबाजी से मुतालिक सरकारी शोबे की मसनूआत साज कंपनी HAL भारतीय फजाइया को 2 LCA FOC तरबियती तैयारे, पवन हंस को अगले दौर के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और भारतीय फजाइया को पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा हवाले करेंगे। 16 LCA जंगजू तैयारों और FOC बनावट वाले 2 सीटों वाले 4 तैयारों से मुतालिक एक मुआहदा 2010 में किया गया था। HAL का मंसूबा है कि वो 2033-34 तक भारतीय फजाइया को 2 सीटों वाले 29 MK-1A LCA तैयारा सौंप देगा। शिवाली फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर के मजालता में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ मार गिराने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सताइश की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कोर की तेज रफ्तार, दुरुस्त और पेशावराना कार्रवाई की तारीफ की। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामा निगार ने बताया कि यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के करीबी तालमेल से चलाया गया था जिससे इंसदादी दहशतगर्दी के सिलसिले में एजेंसियों के दरमियान मुश्तरका तालमेल की मजबूती का इजहार होता है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस राबते में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने और तरबियती राबतों को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। अपनी आमद पर जनरल धीरज सेठ को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने जनूबी सेंट्रल रेलवे में आदिलाबाद के मुकुटबन और गढ़चंदौर के दरमियान तकरीबन 38 किलोमीटर नई रेल लाइन की तामीर के लिए 493 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत ने कहा कि नई रेल लाइन एक मुख्तसर और ज्यादा मौसर रास्ता फराहम करेगी जिससे सफर के फासले, नकलो हमल का वक्त और मुतालिका अखराजात में कमी आएगी। आलमी दर्जाबंदी की एजेंसी मूडीज ने रवा माली साल के लिए अपनी पेशगोई में भारत की असल GDP शरह तरक्की के अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% बताया है जबकि पहले की पेशगोई में रवा माली साल के लिए ये शरह 6% बताई गई थी। एजेंसी ने बताया कि पेशगोई में किए गए इस इजाफे से मगरबी एशिया में तनाजे के पस मंजर में आलमी माशी बहरान के बावजूद भारतीय मीशत की मजबूती का पता चलता है। एजेंसी ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत G20 की दीगर सभी मीशतों के मुकाबले तेज तरक्की करता रहेगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लीन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन मिजाइल और ड्रोन हासिल करने के लिए यूक्रेन को मजीद 3 अरब 30 करोड़ यूरो फराहम करेगा।

0: यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत के बाद यह ऐलान सामने आया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर मोहतरमा लेन ने कहा कि रूस कीव को निशाना बना रहा है और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के साथ है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए अपने इमदादी कर्ज के जरिए रकम की मंजूरी दी थी, जबकि इस बात पर जोर दिया था कि मजीद मदद की जरूरत है। भारतीय टैगबॉल की डेब्यू करने वाली खिलाड़ी किमसी जोकिम डिसोजा ने आज सुबह खवातीन के सिंगल्स में दो कामयाबी हासिल करके जापान में जारी एची नागोया एशियाई गेम्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। किमसी ने ग्रुप ए मैच में जापान की युएना साकामोटो के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए सख्त मुकाबले में 2-1 से कामयाबी हासिल की। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के तरक्याती मकासद और तरजीहात के लिए भारत की मदद के मौकफ को दोहराया। दोनों मुल्कों ने दो तरफा तआवुन और बाहमी अहमियत के मामलों का जायजा लिया। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली की उस करारदाद के हक में वोट दिया है जिसमें न्यूयॉर्क में असेंबली के आला सतह के इजलास से फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को खिताब करने की इजाजत देने की बात कही गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: अभी आप उर्दू सर्विस की नशरियात आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामिन, अब से लेकर रात 10 बजे तक अब आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मीडियम वेव 99.9 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 99.9 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, दोनों मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर का त्यू आकाशवाणी करगिलिन जिन इंफ्राजुगपत पी प्रोग्राम खुरेगा बुल्ला उजीर नफरपन यंत खदमत लल्हिपसोत प्रोग्राम यंग खनसा खदमत लंगजीजुन असलाम पो फ्रतमचन सोशिक दिन जपो शुक्र सप्टम्बर इल्जे चुपग्या तो वक्स पो फितो तो सोत गासों सुख का सतह प्रोग्राम गुजुक पे गफर चुके दोया प्रोग्राम सदाकत दि प्रोग्राम रख सके मजद सहमा कुरानी तिलावत न तर्जुमा
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: خداوند عالمی استمزات می تصفی کا شروع باشد الرحمن تمام بشر گنگمی فریز رحم و رحیم انان الرحیم مؤمن کل روز قیامت جقتان رحم بکن
3: الرحمن علم القرآن
4: خداوند عالم تمام بشر جین انس تمام گنگمل رحم بکن وقت تعلیم قرآن خداوند عالم شزده باسون
3: خلق الانسان علمه البیان
4: انسان خلق باسون دنیا بو خداز بیان پسانان تعلیم تنگسون
3: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
4: نيمان الجد كن مقدر بسي تقدير بسي با حساب نيم بو قرار تامسون وده حساب بكا دنيا تيان چرخص بنچي كورن يد كن تي حساب بكا وسكر منا چنگ منا دون گنگ مز خدا وند عالم سامزاد پلا سجده بت
3: والسماء رفعها ووضع الميزان
4: نم پول دن چوپ بس تن مو بس خدا وند عالم ارسام ازاد پوز و میزان قرار تنگ مسون
3: الا تطغوا في الميزان
4: دا سوسی کا تجاوز و خیانت مشایت پی مینا دی میزان پو قرار تنس
3: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
4: بار آیت نمبو محکم نمبو قیام با سون عدل دی وزن پو عدل کا تا سوچ کا

0: वजन ज्यादा हो गया, किसी को वेट ज्यादा है, वेट पे कंट्रोल नहीं है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि जिसका ब्रेस्ट फीडिंग कभी किया नहीं हो किसी ने, या जिसका जिसने कभी शादी नहीं किया हो, या कोई बच्चा नहीं हो तो उसमें कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया हो, तो उसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा रहता है ब्रेस्ट कैंसर के।
1: अभी भी मतम से इतना मना
0: है, ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं किया हो, तो यही ब्रेस्ट फीडिंग का एक फायदा है कि ये तो कैंसर से बचाता है। तो ये एक तीन रिस्क फैक्टर्स हो गया। चौथा हो गया जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते आप लोग, कोई रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है, और डाइट अच्छे से आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो। और तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे रेडिएशन एक्सपोजर कहीं हो, किसी को कोई ब्रेस्ट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, एक्सरेस हो गया, कोई दूसरा टाइप का रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उसमें चांसेस बढ़ता है।

0: हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के तो. और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं. तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये रिस्क
1: है.
0: साथ में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी, ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें भी यही कुछ रिस्क फैक्टर्स है. ये रिस्क फैक्टर्स भी है, साथ में हम कॉजेस भी इसके बोल सकते हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, यूज ऑफ जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, जैसे शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं, तो वो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ा देते हैं. भूसा मेल में और फीमेल दोनों में. और एक चीज है रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला, एक मोस्ट कॉमन चीज होता है जेनेटिक, एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता है. जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री अगर हो, फैमिली में अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले, किसी जैसे दादी को, नानी को, या किसी फीमेल को, या उसकी कोई पार्टनर को जो उसे कोई लेडीज है उसकी अगर कोई सिस्टर है उसको अगर कैंसर हुआ फैमिली में, तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है. तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है क्योंकि एक जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से कैंसर हो जाता है. ये चीज है रिस्क फैक्टर से, उसके कॉजेस ये ब्रेस्ट कैंसर के.
2: Dentist Dr. Mohammad Abbas, Senior Surgeon, Kanar, the Lexus Colorati Saving and Pin Medium Wave to Nefemi Kadio Akashwani, Kerkilin, Novak Spotus Ranamir Sumchusorasunsu Kasatam Sherbanachim Pia Program Project Nirmazat Program Project Pin Sakina Bano.
3: Assalamu Alaikum. Akashwani Karigilikana Frachupayutpi program Sherbana Chungjibias Lakure Ngayang Sersigantanas Katuk Chenyot Ngachishitina Junasalampo Frakmochan Songshik Yalerin Moche programmer Galuksha Khan Sarmatsunse Kakafono Achinomon Ryang Majare Yantang Sagar Garjuksiot Nasang Nan Mit San Mit Ramosin Munayambo Juksetuktuk Sakwasisnala programmi Tsirpo Programmi Gozukpeka International Equal Pay Day Dikhatuspeka Yantang Sakpas Pedarik Frachuget Del Gapna Ecosystem Restoration Dikhatuspeka Yantang Sakpas Pedarik Frachuget Yang De Lajukpeka Kanis Fatimekana Youth in Agriculture Opportunities and Challenges Dikhatuspeka Yantang Sakpa Talk Chigang Frachuget Kaseta Program Pola Gozukpe International Equal Pay Day Lobingma September Itshis Chobgerla Malakhong Machatsup Dijari Tontakpo Ga Laspo Snyomshigotang De Mingnang Snyomshik Base Tanhat Hobargoshes in Zerbi Principal Poas Ketang Chaspo Inzok Yang Dianuk Ga Mig in Naya Anig in Nagato Donishkil Pianuk Wage Gap Tanheanuk Gabeot Nagato Don Sak Milushuk Pargoshes in Zerbi Samzona Yambo Dirin Jakpo Shuskan Inzok Di equal pay ngatanga matlab pohorang chin su zerna equal pay zerna kato diu insu ki ga lashik ane na mi ya bumu busek na khyoga busek niskas beinot na kato ga laspo tsuksa tsuksyo tsimyot weli wansimyot na kato de laspiano konga salary ya konga tanhat hopjaz inang do niska Zuxa Zuxbaset Hobergoshas in the re. Snasitus Pianuk Chiot Pinzuzer Nagato, Galashik Bomek Nabus Higniskas Benot Nagato, Kura Butala, P. Tanha Kiarik Tanja, Bomula, Tanha Kamrik Tanja, Deming Nandirin Jakun, Shosi Inzo. Matis Dianuk Space Lazer Nagato, Agarkato, male employee, Busha no Karibakanchik, Dona, Bumu no Karibakanchik, Niski qualification, Pusimut, Natsuksa Tsuksutna, Yelaspong Niski Tsuksa Tsuksut Nagato, De gender basic, a cobomu into Kobusha into Zerbi, base pika, Kongi salary, Lokso Lokso, Myong Margoshas in Zere, Zere Inso. International equal pay day, Natis Zer Nagato, Duniati. Part khachi gyanu, hissa khachi gyanu, bumu busanla employment gar khons las benyot nakato, ya income gar khuntes generate benyot nakato, odeyanu khonga fishes mangmu thongenyote insuk, equal pay thoben mete insuk, equal pay بو بوسان نڈنڈا تنخواہ کھوا تھو

için, agriculture ikana için, zan ngati zan sa ga ma ta agriculture ikana thop chin chu de ka na nga ti yang rural development je se nga ti gaung sa ga yang rural area sa ga nga ti other development fila zyada nga ta nga ahum rule chin ne bai bai chin chu agriculture is je se agriculture ikana nga ta nga crops so je se nga te alu ugai ba se nga te nga ti nga ta zamin yo zamin pe nga te alu tap se alu ugai ba se yang nga ज्यादा तादाद यंग उगाई वैसे नाते फर्दर यंग जैसे नाती चिप्स जैसे अलग अलग दिन दस नाता इंडस्ट्री सक यंग चीज सक सामान सक चुआ दे चीज उन रोज पर जैसे आलू नाता चिप्स चुआ दे सक चुआ मतलब यूज छात उदुन गम्मा जैसे नाती फूड सिक्योरिटी नाता यंग ओदि एग्रीकल्चर इक नाउ चासों अगर कतुंग आते ओदि आलू उगाई बस नाते एग्जांपल नाते आलू जरा ओदु उगाई बस से नाते यंग फर्दर इंडस्ट्री सग आलू नाते प्रोडक्शन पो खोंगा फायदा यों चासों खोंगा ओदे कना इन मतलब डेवलपमेंट छचासों खोंगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन छचासों जु जैसे धरी तंगा तंगा तक स्पोर्ट पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो गा तंगा दी दिन दान यंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने यंग दिया नया नया इनोवेशन सक नया नया इनिशिएटिव सक लेन मार्गों से नोट धरी गा ती यूथ ने लगा मतलब दिन बारियां ठीक वैसे सीले ने नसों से उत्पन्न कौन इस नया नया आइडिया नया इनोवेशन कोइन योत जैसे यंग एग्री बिजनेस डाइवर्सिफाइड एग्री बिजनेस जबना बेसिक नाती का क्रॉप पुट्टाप से नाते जिन बात पिनं उस बढ़ कर नाती बेसिक चीज फिला नाते जैसे नाती बेसिक नीड्स फिला जा नाते दी क्रॉप पुट्टाप से ना नाते नाते सा यूज बसे ना दुप बात पिनं उदू दारे मतलब बढ़ाई वसे ngaten chi son sun chu business yang ngatan convert ba yanin chu jese ngati daris nan la ngate chhasuni ka tab na den da chabe no chu de ki rang e phila rang e bo shik zeren sabzi ta be no chu dare business phila ngate sabzi ta matlab chung me phila ba her ngate produce ba se ngate market yang chung me phila ngata sabzi production ba yanin du de ha chu ngate ta na jese ngati फ्रेश बीन जरे गाती सुन पो सब्जी सख जरना ओदुन गाते चीन ना सब्जी सख मतलब अलग अलग सब्जी गाते गाती गाती गाओ गाता अवेलेबल लैंड चोता ओदे का दे का यूज बस दे लैंड पो यूज बसे दे लैंड पो इस्तेमाल बसे गाते यंग प्रोडक्शन मतलब बिजनेस मार्केट फिला मार्केट यंग गाते बिजनेस बे फिला गाते दी क्रॉप उन गाते सब्जीन सक अंगतां प्रोड्यूस छेन होते हैं सुधारे एग्रीकल्चर पे अंगतां आ यू तुन मतलब गचुक गचुक मतलब फनके कतो होते हैं सुधर ना जिसे अंगतां आ जिस अंगते बिजनेस बाय चिंदी का ना बिजनेस बसे अंगते अलग अलग मार्केटिंग अंगतां अंगती प्रोडक्ट्स उन अंगते अंगती ओन लैंड का अंगते अंगती योत पे जमीन पे का गाओ अंगता अवेलेबल योतां एग्रीकल्चर पो बढ़ाई गवर्नमेंट यंग खाचन रोल का जैसे गवर्नमेंट इस गाता अलग अलग पॉलिसी इनिशिएटिव का तो लेने चुक जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाई वैसे जैसे गाता केवीके का गाता केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र जिन ओदे का गाता एग्रीकल्चर ही बारे गाता गागा इन मतलब इनिशिएटिव लेन माया निंदु गा चोक संगाता गा साइंटिफिक कोई देन दाउ प्रोडक्शन पो बारे ही माया निंदु दोन सगाऊ मा कोई इस देखा रिसर्च बस सिलता से गाता गा ओदे ने बारे यंग पब्लिक अवेयरनेस तंग से गाता गा ओदे गाती प्रोडक्शन पो क्रॉप गाती फसल ने प्रोडक्शन पो गा सोगा गाता बड़ाई बायन चादुक जरे ओदों सगे गाता गवर्नमेंटेस पॉलिसी इन सक्चो से गाता गा ओदों आम पब्लिक प्रोवाइड बाना यूथ सगा ओदे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट बाना कुआ मतलब लिटरेट उत्पन्न मतलब सीले उत्पन्न ओदे बारे खुआ ज्यादा

0: मीडियम वेव
1: सभी
0: दोनों
1: अपने
0: एफएम
1: से
0: के
1: हैं
0: जो
1: इसका
0: आकाशवानी
1: प्रोटेक्शन
0: है
1: हो।
0: करगिल
1: जी हाँ
0: न्यूज वर्ल्ड
1: बिल्कुल, और ये
0: वीडियो
1: बिल्कुल आपने
0: कुरुक्षेत्र
1: सही
0: कुरुक्षेत्र
1: जानकारी दी
0: आकाशवाणी
1: है,
0: दिल्ली का
1: क्योंकि
0: ना खबर
1: हम
0: रोने
1: इंडिया
0: लेवल
1: में
0: के जो
1: मैचेस हो
0: लेवल
1: रहे थे,
0: हम
1: लेकिन
0: पास है।
1: इसकी जो मेजबानी है उसका श्रेय पूरा अफगानिस्तान को जाता है। और ये मुकाबले रोमांचक तरीके से खेले गए, दोनों ही टीमों ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार

घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Peris, feswa basi molna uju tserimo.
1: Bakshi ju, sakbasansnala, saka assalamualaikum. International Equal Pay Day zire har saal 18 September la the program is start po 2019 yanuk 17th se 18 September la United Nation agenda chi through start bas kanin. Ode time pika khwa mana khimo feel song ki ngati khaskar gender pay parity zire ki gender wise pay barabar tho vinduk या खोंगा अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चिक्षेन दुख जरे खोंगा बिल्कुल पी की कथों मना 2019 आनो खोंस दी एजेंडा स्टार्ट बखनेन और हर साल बिल्कुल मखसूस बसे 18 सितंबर ला 2020 के नैतिक और गती पहला इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2020 सी 18 सितंबर ला स्टार्ट सों खनेन दैट्स ओगा दिचिक 2026 है गांव दियो 18 सितंबर लर्सी सेन और सबसे इम्पोर्टेंट मोटो दियानुक दियो रिमाइंडर चिकन गता कि ग्लोबल जेंडर पे गैप पु कम बसे वुमेन उनिस या गति अचनोमोनिस लस पु बराबर बसे ना कम सैलरी कम पे आन बखन उनला रिस्पेक्ट तंगमा या खुआ बराबरी तंगमा दी जाप पु 2020 सिकन दांग से दिरिंग सप्पा स्टार्ट बसे दक्षिणात इस मनाई बनियोत और सबसे इम्पोर्टेंट ngatangar taspayot ki busana bome responsibilities zernang samachi levelika ya khangme levelika sak choksmet pana khonga majbur song se las khachiganu kam pe ka lasba majbur song sen chuk to dun gama sort out beming na ya dun gama social responsibility andar khong meming na di dev 2020 se kanaltik 18 september langatis manai basin chuk
0: Bakshi sir, yaris legi na fesba basi muls. Kasa sal ni idea cha mulna di jak purcho na kato nga tang bu mul la fes sang hasar. Bu mul la di kana tam chi fan kek duk sir bakshi sir.
1: Milkul jo. Kwa nga du fayda cha cha se ndaksa nga ti samaj yang zirna ya society yang zirna. Du sirif India cha ispera bin pura world yang nuk di problem po mana choko problem chik choka du len yot. Dika nga tis di gye po sabse pehla na occupational segregation zirin. यानी कि लास्ट पे पहले ना फिशेस बस चोस होते हैं जो लास्ट का चीज जैसे हेवी लाशी को इतना बोमा आगे जमीन खोआ बा दू मावा चुक बाना का तो कम सैलरी का बचुक जरे बचुक खानी फैक्टर्स चीज इंजुक या समाज पानुक अनइक्वल केयर बर्डन जरे जैसे खंगमा बेचारा अमान ला फ्रोनी का मन ज्यादा केयर तां से खंगमी लास पो मंगमो बार गो सेंसु दुन गंगमी वजह का दी प्रॉब्लम पो दिरिंग खंग कछे न्योतां तो बमुन ला दी डेव मनाई बसे गतिस दी सपोर्ट पो या दी मैसेज पो तांचा सेन कि खंगा कभी भी कोई भी जॉब जैसे लस खचिका गतिस जबाद मैन ओरिएंटेड जॉब्स रिन जैसे गाती बमोन इस खासकर पुलिस एंड कम फॉर्म्स कांचा या आईपीएस केपीएस सोस जगह ने खून कम छे कोशिश बचा ना हाई प्रोफाइल जॉब उन खून ऑलरेडी प्रिजर्व है जाचा बुसाने फिलाइन टूरिज्म में जाना है तो बुसाने फिलाइन दो मावा खून हाई प्रोफाइल जॉब उन्हें फिला अप्लाई बसे या सोसाइटी यंग लोग गाता अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना तो इक्वली शेयर बसे बुसा बोमोंग इसको का खोंग इस अर्दमो बसे खुन्ते रिस्पांसिबिलिटी इन खा उन खुरे आगे खुन्ते लाइफस्टाइल पो या खुन्ते सोसाइटी ताई रिस्पांसिबिलिटी उ चेंज बसे खुन्ते लाइफ पो बेटर बना इंचा सिंजो दिस सेग्रीगेशन जर बना लास उन पूरा अलग अलग बसे सेग्रीगेट बसे चोच होते हैं जैसे मालूम मिस्त्री लाशिक बना वाना बोमा बिल्कुल इंचा सिंजो फॉर एग्जांपल दस होगा उधर लास उन नक्सन बढ़िया प्रोफाइल जॉब इन्ना और दिमो बसे क्वालिफिकेशन बस होत लेकिन खून अच्छा खासा केपीएस आईपीएस तो सुने खून फॉर्म्स का मजिक्शा सीन नक्सन आती मेडिकल इनका तो जर ने एएफएमसी जरे मेडिकल कॉलेज होत या आती एनडीए होत उधर ने खून छोटा मोटा इश्यू का तोलता से ध्यान दूंगा आती फिलामेंट सुख बमोनी फिलामेंट सुख या दूसरे स्पेसिफिक बुसाने फिलामेंट सुख या अंगा का तो ध्यान सिलेक्शन ना दिला स्पंगा निभाई वांग इंची ना मिन्स जरे खून उधे शक पुस बसे या उधे बढ़न पुस बसे खून प्रॉब्लम चेन तें सुख दूस सॉर्ट आउट बेमिंग ना खून हमेशा खुनती फ्यूचर इफ या केयर बचा हमेशा हाई प्रोफाइल जॉब इन या चांस गिर गया लाला सिन्ना उधर नंग खाग लेने उधर नंग हिस्सा लेने उधर ने टेस्ट उन्हें खून अपीयर सोंसे खून इस खुन्ती प्रोफाइल उन्हें या खुन्ती रिस्पांसिबिलिटी आगे बढ़ाई बसे खुन तंग ज्यादा डोमिनेंट और ज्यादा रिस्पांसिबल दन में कोशिश बार कुछ ऐसे जो
0: हम बख्शे सर ये रिसले की नफेस पर बस मूल्स कस सर नी दिया चाहे मूलना दरिंग आता है सर ये रंग ऐसा फ्रूगो तो अशील सब पे उस ताज चीज़ उस उत्पन्न का तो ये रंग तक्ष पर छेता सर की गाती गा वो मेग या बुत्से का फेशे शिक दरे दी तो उस पे आंग आती दी लदाख या खत्ते कारगिल सर खानी यूलुन यंग ये रंग थोम अशेष तसर बख्शे
1: बिल्कुल जो सब बसन पहला आंगते आईन चीज अंदर लस वेन्यू उत्पन्न आंगती कॉन्स्टिट्यूशन है अनुक आर्टिकल 39, 40, 41, 42 गंग में उस ब्रिस की इक्वल बिल्कुल ह्यूमन एंड जेंडर इक्वालिटी जरे दो अका तो मबाना आतंक कॉन्स्टिट्यूशनली आतंक बैकवर्ड सोसेन या आतंक लीगली आतंक

0: immoral song sin to ngati kargil la khuda ne mam shazde daksan sag pa ngata this was factor chik man mathong ki ham ngati bomol la kisi bhi jagah chiganu bar bar khon depress bas ek khud una hissa milen me ya shasi lihaz khas karin na daksa bahut sare do school jahan equally ngati butsa bomos ngem bushes lene ne या दो मिन मंग प्रोफेशनल लाइन से अरिस्ताना मेडिकली कोर्स बेन्योत आई टी आई बेन्योत या बहुत सारे और ऐसे जगह हैं जहां कंधे से कंधा मिला के अति बुसा नबो मोनिस के बोलस बेन्योत मगर त्यां छोको प्रॉब्लम चिकची होत जबना बोमोन खुंती तरफ ना या सोसाइटी नजीरिया ची तरफ से का खुआ सक्सिक फैशे शिक्षक शिक्षे ने जो जैसे आते जैस जॉब पो पहले ने सेग्रीगेट बसे जॉब सुप कि दो बमो सागे फिलामेन बमो साग आईपीएस आ चाहे जमें ने वाला पॉलिसी ऑफिसर चिकन नखों प्रॉब्लम चचा सीन रिस्पांसिबिलिटी मामू में हम चा सीन छोगो छोगो केस उन नंबर डील बार वशा सीन डाकू साग नंबर डील बार वशा सीन कुनमा साग तो एक फैक्टर चिकत गाँव निज बसे शायद खोगा ओदो ने आनुक एग्जाम फॉर्म उन कंगमा या दो बस हाई प्रोफाइल जॉब खची गोद गान हमेशा मीन फिला रिजॉर्ट लुशा सीन भले ही बमोन चाह के भी खोंगस खुंती ओदो चोक छोटा मोटा फैक्टर इंट्रोड्यूस बसे बुसान लसकांग जुसे बुसान ही ज्यादा डोमिनेंट छचुक सुर या दो मिन ना यंग फैक्टर चिचिक ची नती समाज में यंग दक्षा बमोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मन मांग में ओन जो फ्रूनी केयर चिक इन नंग या नंग खंगमा शुलचा चिक इन नंग दु फैक्टर उन गंगमस बसे खोंगस द्याव हमेशा संबसु कि अगर कतोंगा बाहर ला ओपन जॉब चेंग का तो छाना जहां दस टू चार या दस टू आठ दस टू बारह लस बार घोसना ये खंगमा मन पूरा वीरान सों से लू से जरे तो उदय फिलहाल दक्षा अति फ्रू ने दमो बसे टेंथ टू ट्वेल्थ क्लास जिसमें अचस डील बने होता और तिमो बसे को एजुकेशन बराबर अपॉर्चुनिटी ने गंबो बराबर प्रैक्टिकल बसे बराबर थ्योरी से ले और तिमो बसे से लेना चौक ट्वेल्व पास छाना खुंतिस यंग दें हल्का फुल्का दे सोसाइटी बेस्ड प्रॉब्लम जरना या ऑलरेडी अति समाज इस चूस खानी विजुअलाइजेशन की तरफ ललता से हल्का सा खोने वो जेंडर पैरिटी नाता छा थो दूजो अदरवाइज दक्षण गवर्नमेंट इस दे सब इक्वालिटी दी आर्टिकल ने थ्रू चूस योद कि खो हर जगह सो से एक्सेल बसे इंडिया के टॉप एग्जाम जैसे आईएएस योद आईपीएस योद या हाई प्रोफाइल जॉब है तो कमिश्नर बन सकते हैं खो पॉलिटिक्स से अच्छा ना खो दया समचिन के पॉलिटिक्स से उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोज चार गोसन दुख बहुत ज्यादा मेहनत बार गोसन दुख तो खो हमेशा इग्नोर बसे उदो न थकरिंग दुख पे कोशिश बेन तो एजुकेशन के लिहाज से अति करगिल ला लद्दाख बिल्कुल इसमें पार्शियलिटी में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अति स्टूडेंट हमेशा थो बेनुद दरंग थो बेनुद और आगे थो बेन लुशा सिंह और जितना अच्छा पहला जमाने हल्का फुल्का पैरिटिक छात बिन दुख जैसे प्रैक्टिकल चाह लैब चेंग खेरना बोमोनिस एक्सपेरिमेंट बचाविन बुसान बचिन बोमोनि का एसिड वैसिड गिरने का चांस है खून जिक्स पर दक्षा उदय स्टिग्मा गंगमा नूर अहमद नति सोसाइटी आना जितना मेहनत बसे अति बुसान इस लस बेन्योत सिलेन्योत प्रैक्टिकल बेन्योत थ्यूरी सिलेन्योत या रिसर्च बेन्योत प्रोजेक्ट चुन्योत उतने ही मेहनत शिद्दत और हिम्मत के साथ दिन अति बोमोनि सांग बेन्योत तो एजुकेशन लिहाज से का खो बिल्कुल ओके होत उनको कोई पार्शलिटी नहीं है बगर खो इस आगे खुंती जॉब पुगत चुका सिलेक्ट बचें दें हिम्मत स्तने दें खुंती जज्बा स्तने खो इस बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल जॉब उन्हें हिस्सा लेने खुंता समाज मेन नो बराबर बसे अगर खो इस गा गा लसुन मैन इस इक्वालिटी ने हम बैन होते खो ऐसा हिस्सा का तो लेना देन पे पैरिटी मैंने लुशस में खो बराबर सैलरी थप चा सिंजू गवर्नमेंट नॉर्म से ऐसा बात
1: हम बख्शी से हेरस लेगी नर दे मोमोस कस निदा चम मोलना दे रिंग अटेंड टू जक चम स्टो से दुखा सर निदियम दु चुक सिया जेरे दुख दुख सर कि अति गा मल छ छी का अगर का तो लास पु चुक सुंग अटा बु छन ना बु मोल चुक या बु मोल दे मल छ का पेने इनचे का तो थोबिन न का तो खोय या दे मालिगुनी फिला चम कानून छी या चम सजिक दु चुक सिस्टो से दुखा सर
0: बिल्कुल जो दी द एजेंडा खोरंग उदय इस पेरे का शुरू सोंग से इनके पी गी का 2019 सालों की यूएन सर्वे बसुक जो उस सर्वे में खो पता सोसुक कि जगह खाची का जैसे एग्जाम्पल चिंगाते स्थाना मान लो मी चिक चिक स्वीपर जरे पोशी का तो खो ऑलरेडी दुख से होता गवर्नमेंट इलाशिंग खो सीमा एक घंटा स्वीपर इलास बाचुक द लखवा पूरा गवर्नमेंट इस बढ़िया गैजेटेड खुरी लेवल हिसाब से सैलरी चोसी होती इन दोगा लेडी शिक खांगमा प्रॉब्लम खन चिकिस देना एक घंटे लास पो सुबह शाम चिक बसे चिक चिक इन्ना 90% कम पेने का खुश देलास पो बेने तें जुग जु छाना दूला जैसे मिनिमम वेज रूल जरे आती गवर्नमेंट इस रूल जो सो कि अगर यार सम से प्रॉब्लम उतना ओदे सैलरी तनखान पोसिया ओदे लस के जखान पोला दू कभी भी हक में कि खोस यारंगा मिनिमम वेज रूल पो बसें कम जैसे मान लो यारस लेबर इलास पे उतना गवर्नमेंट इज गेजेटेड चो 550 रुपीस अगर पर डे मिनिमम वेज रूल इनना दो बसें यारा समसे प्रॉब्लम उतना ओदे लस लेन खान पोस या ओदे पेने तंग खान पोला 550 रुपीस बसें कम तंग में राइट कभी भी मैं तो ओदे प्रॉब्लम उनका बेमिंगना दी रूल उनचो सिंजू एक तो ये एजेंडा अंगती यूनाइटेड नेशन इस तक हर साल मनाई बेले

0: कहते हैं चूँ मत की, जिसकी वजह से हम फिजिकली एक्टिव रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: काम अच्छे से कर पा रहा है,
1: बिल्कुल बख्शिश।
0: तो कार्बोहाइड्रेट जो है वनस्पति एक मेन सोर्स है हमारे एनर्जी, हमें 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट घाता कार्बोहाइड्रेट के ना एनर्जी थोपच, तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स है, और दी कार्बोहाइड्रेट के ना आता एनर्जी थोपना घाता जो है इजिली घाता एक्टिव दुख से एक्सटर्नली जाना साथ ही साथ घाती इंटरनली मतलब चीजा सब प्रोसेस का तुम छे नौ दोन दमो बस शेड्यूल भी फैला घाता एनर्जी मन गा गा चीज सुने का नाता आदि कार्बोहाइड्रेट जैसे कहती लोकल जन गाते आमतौर पर गाते बत्तो जेत टैकी जेत देना चाहती लेग्यूमिनस प्लांट्स का नाता है, जैसे छोटी फ्रूट्स वेजिटेबल दिन गाँव सोर्स इन गाता दी का नाता सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का नाता एनर्जी तो
1: बख्शिश जो दूँ आता एनर्जी है जो आती रुगुला खुद तो मतलब मेन सोर्स वो आता कार्बोहाइड्रेट इन सुख कैसा बख्शिश और आता का कैसा नहीं होना चिंता ना रेस्ट दूँ मस बख्शिश कैसा
0: तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का नाता एनर्जी थोप ना गाता मतलब कि आती रुई प्रोसेस ऑन ठीक बसे डुले और आता एक्टिव
1: बख्शिश।
0: तो कार्बोहाइड्रेट में भी आता दो टाइप्स हो चिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट चीना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चीज
1: बख्शिश।
0: तो जैसे खाची वीक हो या कमजोर हो तो बॉडी चोसने कमजोर होना बॉडी चोसने कार्बोहाइड्रेट चिलियन मरगोशिन जरनरी। तो जैसे मेन चीज आता बतो जरे टकी जरे या आती स्टनमोन में दाल वाल सकन कार्बोहाइड्रेट हो चिन दोनों कोलेस्ट्रोल जरखनी चीज हो तो दोस्त बसे आती बॉडी अनुक चीज है चिंता मना कोलेस्ट्रोल जमा छा ना बॉडी दन चिन में तो गान ला बॉडी चोसने तो दे जानून जा कार्बोहाइड्रेट में कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है जैसे अति उदय टकी बतो सकदाना दे कार्बोहाइड्रेट में एम्बो एम्बो कोलेस्ट्रोल हो चिन दोस बसे अति बॉडी ठीक बसे कोलेस्ट्रोल जम बचाना बॉडी दन चिन
1: पाया।
0: बाकी गान ला मिसल ची डायबिटीज पेशेंट होना गान मोटापा ज्यादा छिन होना खुआ कार्बोहाइड्रेट नर्गोस एनर्जी फिल करोस लेकिन कोलेस्ट्रोल की वजह से खुआ प्रॉब्लम छे जैसे डायबिटिक पेशेंट ला या ज्यादा मोटापा उतखनी पर्सन ला तो गच खुआ गच गच चीज का तो खुआ कंज्यूम बार क्वेश्चन जेनेरिक जैसे अति वेजिटेबल जरे फ्रूट जरे सुनपो सब्जी कोलेस्ट्रोल में मा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑनचिन माया तो ओदे चोला ओदे जाती चीज तन लेन मना खु मतलब की दूसरे हाथे दू आता मेन चीज एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में दूसरे हाथे प्रोटीन स्कोर ला स्पेरा जेनेरिक प्रोटीन जो है मतलब अति सबसे अति बॉडी दन में जरिया खुरा प्रोटीन सुनते ना ग्रोथ डेवलपमेंट छेन अति बॉडी दन है लेकिन आता नौ चिरसिक पिफिया आता पगबूर घुस उतर घुस असर घुस तो तब जाके आता नौ चिल्लन ऐसा अति बॉडी और ग्रोथ ना डेवलपमेंट छे प्लस सबसे मेन चीज
1: बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोटीन
0: यानी कि जो है प्रोटीन की मतलब जरूरत होती है बिल्ड पे फिलंग अति बॉडी कंस्ट्रक्ट पे फिलंग
1: बल्कि
0: प्रोटीन जरूरत प्रोटीन इज बस अति बॉडी एक तरह ग्रोथ डेवलपमेंट छे दूसरा जो है आता कभी मतलब जखम वखम छाना उतन वॉन्ड हीलिंग में कर और दूसरा जो है प्रोटीन लस पोखर अति बॉडी स्ट्रक्चर सब अच्छी फिला यानी कि अति बॉडी कंस्ट्रक्ट पे फिला प्रोटीन लस पे देना खुरा तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जैसे अति कार्टिलेज यानी कि अति चक्रम चक्रम और अति बून वून दोनों फ्लूड चौचिन मैट्रिक्स तो फ्लूड पूरा लेबल और स्टेबल होते रुस्मान ना चक्रम में नाजक पे फिला प्रोटीन की मदद पे जैसे कि कोलेजन प्रोटीन जो कि बहुत ही जरूरी है देन सो अति इलास्टिक इलास्टिन प्रोटीन जरखन चौमत जो अति रुस्पा नाशियात होते हुए मतलब हम बून और मसल को अटैच करके रखते हैं तो ओदे लहसुन ठीक पसे फैसिलिटेट बताऊंगा प्रोटीन लहसुमत देन सो मसल यानी कि बून टू बून अटैच जैसे अति जोर सा पुक्स और फ्यकपा सकान जोड़े ही बसे जाता टेंडन लिगामेंट उदोन थूते जग पता हम तो ओदो नी लस पु ठीक बसे बच पुफिला फैसिलिटेट बताऊंगा प्रोटीन जाना चौंग अति सेन मोजरे बाल वाल जरे दून गांव में आनो चील देना उचित जब ना केराटिन प्रोटीन जरखन
1: केराटिन है जो
0: अलदा है उचित सर जाना चौंग हिस्टोन प्रोटीन देन चिंग अति डीएनए सब ठीक बसे अति क्रोमोसोम में आनो अरेंज है चुक सोचिन सर जाना चौंग अति एंजाइम में बना ठीक बसे स्पेरा ताऊ जिन एंजाइम भी एक तरह की प्रोटीन है प्रोटीन से बना होता है जैसे अति हार्मोन होगा तो सब प्रोटीन होता है दून गांव में अलदा में फिला प्रोटीन से बहुत बड़ा रोल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ही बारे अति जिस तो एंजाइम ही बारे जाना पहले जिसकी एंजाइम ही एक प्रोटीन होता है तो एंजाइम का बहुत बड़ा अति हमारे बॉडी में रोल होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना होना इज दस

0: ऐसे रॉ मटेरियल गति बोड़िया यूज बांगे चस मेन तो खुदा दे सुख निजाम का तो जो से दुखी गति ओदे खाना ओदो सुख शंग कन्वर्ट छिंदु गति बॉडीज इजीली ओदे गति बॉडी सेलुनिस इजीली ओदोन यूज बांगे चस तो ओदा ना मेन रोल पो केमिकल होता है एंजाइम्स एंजाइम्स होता है तो जैसे गता गते चोक जान पर जाना गति बक्कल केविटी जरे गति मौत भी कन स्टार्ट खाना डाइजेस्ट तो सबसे पहला ना टीथ पुस मैकेनिकल प्रोसेस से जब ही बस हम छोटे छोटे पीस में ब्रेक ऐसी तरह गति खाओ थू
1: मत
0: सलेवा एक एंजाइम चौचिन स्लेवरी एमाइलाइज स्लेवरी एमाइलाइज एक ऐसा एंजाइम होता है जो गते स्टार्च पो यानी कि गते जान चीज होती है टैकी वकी जाना होता है स्टार्च ही प्रेजेंट होता है वो स्टार्च पो खुश माल्टो संग कन्वर्ट होता है तो यंते नोटिस बस दुख तो कभी गते टैकी विल दाते दुख तो पना ना स्वीट प्लिक्टेशियन तो क्योंकि खाने सुक्रोस पो उदे स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम पुस कन्वर्ट बस इन माल्टो संग तो उदो बस उदो शुगर चीन दे सर तो फिर इसके बाद देना दो एंजाइम दूसरा एंजाइम भी होता है हमारे माउथ में लाइसोसोम जी जो कि गति खाना या वो बैक्टीरिया वैक्टीरिया गति जन पो या बोगा ख्याल छिक उदे एंजाइम पुस खत्म बस फिर इसके बाद एंजाइम जो है हमारे स्टोमच में होता है गति जान पो सफाई के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टोमच आने सर स्टोमच आना फर्दर गति फूड पो ब्रेक डाउन छिन सर ध्यान आओ बहुत सारे एंजाइम जैसे पेप्सिन होता है उधर पेप्सिन भी एंजाइम छिन सर जो कि प्रोटीन ही ब्रेक डाउन अच्छा अच्छा सर एच सी एल जेन एसिडिक आउचिन एसिडिक पेप्सिन ही लेस पो फैसिलिटेट बचिन तो एसिड जमाना दूसरा ओदे एसिड पुना एक तो खोस प्रोटीन ओदे पेप्सिन ओदे एंजाइम ही लेस पो फैसिलिटेट बिन दूसरा साथ ही साथ गति बैक्टीरिया का तो जाम जान दो अंकिल बसता ध्यान ना फिर चिकना गति दे सक पे फूड पो ब्रेक डाउन सो फिर इसके बाद गति स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि गति सुंसर घुमा देता हूँ देख लेबा ना फर्दर एंजाइम्स का तो ना उचिन जैसे लाइक पेसरी पेप्सिन यानी कि माल्टेज रे उदोन इस कन्वर्ट बचिन सर माल्टोस माल्टेज वो माल्टोस यानो कन्वर्ट बसता उचिन देना चौगा पेप्सिन पुस प्रोटीन डाइजेस्ट बचिन देना चौगा लाइपेज पुस लिपिड पुस डाइजेस्ट बसे दो चौग सैंपलर सब बसिन का तंग कन्वर्ट आतो तो देना स्मॉल इंटेस्टाइन ना कंप्लीट डाइजेशन छिन और ब्लड थ्रू ओदे न्यूट्रंस गम्मा गति अलग अलग बॉडी पार्ट्स ऑल एक्शन तो दी लास्ट वन एंजाइम इज पूरा हमारे डाइजेशन में ही एंजाइम का रोल हो तो अब इन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल जो है इन ऑर्गेनिक केमिकल्स का थिन हालांकि तो गता मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होगा प्रोटीन्स होगा ज्यादा मकदार गता जरूरत है मिन कम अमाउंट यानी कि कम मात्रा में ही मतलब गता जरूरत कम अमाउंट हम मतलब ग्रीन यू चस्पो अगर ती बॉडी अनु छचस दो तरह के मिनरल छिन माइक्रो मिनरल छिना माइक्रो ना माइक्रो माइक्रो जो बना गा मिनरल ज्यादा मात्रा को जरूरत माइक्रो जो बना जिनकी जरूरत मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन होना
1: जरूरी है बिल्कुल
0: सर तो माइक्रो मिनरल्स गाने उचिन जनरिक जैसे कि अति कैल्शियम उचिन कैल्शियम ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन मैंगनीज ऑक्सीजन एक्सेसिफिया यानी कि गति कैल्शियम ही सबसे बड़ा रोल है कैल्शियम 90 से 98% कैल्शियम गति रुस्पे ऑक्सीजन खोज गति बून सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन सर और उसका रोल होता है 1% चिक गति मतलब मेटाबॉलिक रेट बेफिला या तो नर्व्स के जो फंक्शन होता है मैसेज एयर दर्ज खेल 1% चीज लेकिन फिर मेन रोल पर जो है गति बून सक कार्टिलेज गति कैल्शियम ऑक्सीजन सर और डीप प्रोडक्ट ना लगाता घर घर ना गाता मतलब कैल्शियम थोप चिन्ह घर सोर्स गाते गाजर कुछ जिसकी वजह से हम कैल्शियम गति बोलिया कमी में छा जैसे गति मिले ओरिजिन गति हम अभी देना चौगा और मिले खाने कर्ड वर्ड घी सका जो सोनपो सब्जी होता है गति पूरा छचिन गा इंसान छ मतलब कि दिस कैल्शियम डिफिशियंसी छो डिजी छचिन जाना जैसे कि रैकेट्स रैकेट्स मतलब बीमारी कहाँ गाओ विटामिन डी डिफिशियंसियां छाना जैसे विटामिन डी ना ये में कहना तो नीमा देना विटामिन डी ऑटोमेटिकली गति बोड़िया एब्जॉर्ब छचिन तो विटामिन डी कमी से रैकेट्स छचिन तो कैल्शियम में कमियां डिजीज पूछे सचिन जब ना विटामिन डी ही एक ऐसा है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है गा बॉडियां विटामिन डी कमी छा खुए बॉडियां ठीक बस विटामिन कैल्शियम ही एब्जॉर्ब

0: गांदरबल में आज हरमुख गंगबल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद इजहारी ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि ये यात्रा भारत के शानदार माजी और मौसर हाल के दरमियान एक पुल की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि मुश्किल जुग्राफियाई हालात और तारीखी नशीब फराज के बावजूद श्रद्धालुओं ने हर मुकुट के साथ अपनी रूहानी वाबस्तगी को बरकरार रखा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो यात्रा के दौरान कुदरती वसाइल को तहफ्फुज देने की तरफ खसूसी तवज्जो दें।
1: हरमुख गंगबल यात्रा हमारे गौरवशाली अतीत और जीवंत वर्तमान के बीच एक ब्रिज, एक सेतु का काम करती है। साथ ही तीर्थ हमें प्रकृति के निकट वापस भी ले जाते हैं। यात्रा के दौरान हम अनुभव कर पाते हैं कि प्रकृति हमारी धरोहर है और उसके प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। आज जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट पूरी मानवता के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, तब हमारी यह प्राचीन दृष्टि और भी प्रासंगिक हो जाती है। मैं सभी श्रद्धालुओं यात्रियों से निवेदन करूंगा कि हरमुख गंगबल तीर्थ की पवित्रता हमारे आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। हम प्रकृति के संरक्षण के कार्य में भी संकल्पवान हों।
0: इस मौके पर पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद, असेंबली मेंबर कंगन मियां मेहर अली, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम के भंडारी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, आईजीपी कश्मीर सुजीत कुमार, हरमुख गंगबल के बानी चेयरमैन विनोद पंडिता के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी में मेरिट पर मबनी हुक्मरानी के अमल नीच सिक्योरिटी मंजरनामे को मुस्तहकम करने की गरज से आज जम्मू कश्मीर पुलिस गेजेटेड सर्विस के 29 नए मुंतखबशुदा अफसरों में तैनाती के लेटर तकसीम किए। अपने खिताब में एलजी ने कहा कि तैनाती लेटर महज दस्तावेजात नहीं बल्कि ये इन अफसरों पर जम्मू कश्मीर के शहरियों के भरोसे और एतमाद के भी अक्कास हैं। उन्होंने नए अफसरों को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया कि वह दरपेश चैलेंजों, दहशत पसंदी, इंतहा पसंदी और दीगर जराइम के खिलाफ तनदेही और लगन के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों को हिरासा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, डीजीपी नलिन प्रभात, दाखिला महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्राकर भारती और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नॉर्दर्न रीजन के एक वफ्द ने इसके चेयरमैन पुनीत कौरा की कयादत में आज लोकभवन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में सनअती मंजरनामे को फरोग देने, नीज रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने से मुतलिक अमूर पर सिर हासिल तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने गांदरबल में 6,17,00,000 रूपये की लागत से तामीर किए जाने वाले जदीद तर्ज के एक कसीर मकासिद वाले इंडोर स्पोर्ट्स हॉल को मंजूरी दी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस सहूलत की बदौलत जिले के नौजवान खिलाड़ियों को खेलकूद का बुनियादी ढांचा दस्तियाब रहेगा और जिले में स्पोर्ट्स कल्चर को भी इस प्रोजेक्ट की बदौलत तकवीयत हासिल होगी। वजीर आला ने मजीद कहा कि हुकूमत यूटी के तमाम इलाकों में खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की वादाबंद है ताकि यहां के खिलाड़ी कौमी और बैन अलावामी सतहों पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। तालीम की वजीर सकीना ईतू ने आज श्रीनगर में महकमे तालीम में इंसानी वसाइल के मुनासिब इंतजाम से जुड़े मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में इल्तवा में पड़े तमाम मामलात को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। मीटिंग में महकमे तालीम कश्मीर सूबे के अफसरान मौजूद थे जबकि जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने वर्चुअल मोड के जरिए मीटिंग में शिरकत की। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा।
2: लोकन हिंदान टीवी मुखालिफ भारत अभियान सासी टीवी बीमारी हज निशानी ताप सीनस दग थक खून रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गुन तो बहक तिशी टीवी बीमारी हज अलामत टीबी चुन लाइलाज के तमाम सरकारी मरकजन पे टीबी बाप टेस्ट इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयू नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीबी मुक्त भारत अभियान एप पे टीबी हारित मुल्क जेने लुक मफातस मज जारी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
0: खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैनाती के ऑर्डर तकसीम करेंगे। बाद में वो तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये रोजगार मेला बैक वक्त मुल्क के 45 मकामात पर मुनकिद हो रहा है। वाजे रहे कि अब तक मुनकिद किए गए इन रोजगार मेलों के जरिए मुख्तलिफ महकमों और सरकारी इदारों में नए तैनात किए गए 12,75,000 नौजवानों में तकर्रनामे तकसीम किए गए हैं। इसी दौरान वजीर आजम कल नई दिल्ली में द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स के

अभी आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर आकाशवाणी करगिल की आवाज से सामीन शब के 8 बज चुके हैं। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जूली। ऑल इंडिया रेडियो करगिल के स्टूडियो से मैं एहसान अली बिस्मिल आज के फनकार प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फौजी भाइयों, आज के फनकार प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेपनाह खूबियों और सलाहियतों के मालिक थे। मौसीकी इनकी रगों में दौड़ती थी,

हिंदी फिल्म जगत के वो अनमोल नायाब नगीना जो तारीख बनकर अपनी नायाब मौसीकी से लोगों के दिलों पर राज करते रहे, उनकी मौसीकी के जादू ने तरक्की की वो मंजिल हासिल कर ली थी कि मौसीकार आजम के खिताब से जानने जाने लगे। एक बेकरार दिल से मुलाकात कीजिए, जब मिल गए हैं आप तो कुछ बात कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था मौसीकार आजम नौशाद। दीदाए अश्क बार लेके चले हम तेरी यादगार लेके चले, जिंदगी मुख्तसर मिली थी हमें हसरतें बेशुमार लेके चले, रूप नगमों के दे के हम नौशाद अपने दिल की पुकार लेके चले। नौशाद का पूरा नाम नौशाद अली था। वो 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने 6 साल की उम्र में संगीत से जो रिश्ता जोड़ा वो मरते दम तक जारी रहा। उन्हें क्लासिकी मौसीकी और लोक गीतों के हल्के अंदाज में पेश करने का फन बखूबी आता था।

धीरे धीरे गुरबत अली ने नौशाद पर इतना भरोसा कर लिया कि पूरी दुकान का काम उनके सुपुर्द किया। ये दौर था साइलेंट फिल्मों का और लखनऊ के रॉयल सिनेमा थिएटर में साइलेंट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुआ करती थी। नौशाद रोज वहां जाकर देखा करते कि साजनदार साज कैसे बजाते हैं। इससे नौशाद का शौक इतना बढ़ा कि रोज गुरबत अली की दुकान पर सुबह सवेरे जाते और वही धुन बजाते जो उन्होंने रॉयल सिनेमा थिएटर में सुना था। एक दिन नौशाद साहिब धुन में इतने गुम हो गए कि वक्त का पता न चला। वो साज बजाते गए और अचानक गुरबत अली दुकान पर पहुंचे। गुरबत अली के मिजाज को जानते हुए नौशाद को लगा कि आज तो खैर नहीं, और गुरबत अली ने कहा कि गुस्ताखी की सजा के तौर पर ये बाजा आज आपका हुआ, जाइए बजाइए, मुझे उम्मीद है कि एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे।

1937 में उन्होंने मुंबई का रुख किया और 1940 में फिल्म प्रेम नगर से अपने फनी सफर का आगाज किया। फिल्मी दुनिया में उनकी रहनुमाई उस्ताद झंडे खान ने की। 1944 में रिलीज होने वाली फिल्म रतन नौशाद के फनी कैरियर का एक अहम संगमेल साबित हुई, जिसके बाद इनकी मौसीकी ने अवाम को अपना गर्विदा बना लिया। नौशाद हमेशा अपने फन में तजुर्बात करने के हवाले से मशहूर थे। उन्होंने क्लासिकी मौसीकी और लोक संगीत को इस अंदाज से अवाम के सामने पेश किया कि आज भी इनका संगीत लोगों के कानों में इस तरह घोलता है।

नौशाद ने 67 फिल्मों में मौसीकी का जादू जगाया, जिनमें 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। इनकी फिल्मों में शाह जहां, दिल लगी, अनमोल गड़ी, अंदाज, मुगले आजम और दास्तान जैसी फिल्में शामिल हैं। नौशाद ने 2005 में अपनी आखिरी फिल्म ताज महल की मौसीकी 86 बरस की उम्र में तरतीब देकर दुनिया के मुअम्मर तरीन मौसीकार होने का एजाज भी हासिल किया। उन्हें मुतात एजाजात से नवाजा गया है, जिनमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड के नाम सर फहरिस्त थे। नौशाद 5 मई 2006 को मुंबई में वफात पा गए और जुहू के मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए।

0: अभी आप फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम में आज के फनकार समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज से।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते।
1: बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: डॉक्टर आशा माथु साइकोलॉजिस्ट नेचुरोपैथिक दोना होम्योपैथिक फिजिशियन स्पेशलिस्ट कारगिल ललित रुस्पेजर्मो स्केपेजर्मो सेजर्मो गोएजर्मो हेपेटाइटिस थायराइड पुक्समेजर्मो मेल फीमेल प्रॉब्लम्स दोना गा मरीशी योदना पासगो होटल एंड रेस्टोरेंट लास्ट ऑफ कारगिल्ला मोतुगी तुसुरगी कना फितोगी तुसुगा सपेक्ता चाइन यंग यंते तहतो मिंग नजरना डॉक्टर जामा खाचिक कारगिल्ला शुक्षाइन
1: मीडियम वेव 680 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, एफएम 106 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामिन शब के 8:45 मिनट होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।
2: कार्यक्रम गीत मालिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक। देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी।

0: सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश

0: न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and UAE reaffirmed their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President Dias Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region. Condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under

0: measures for all states and union territories to prevent Hooch tragedies. These include stricter monitoring of methanol procurement, storage and transportation, periodic scrutiny of licenses and permits, and specialized disaster management systems to deal with mass casualties. A two-judge bench made the observations while striking down Maharashtra's rules requiring bitterant and colorant to be added to methanol sold to non-drug manufacturers. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Andaman and Nicobar Islands and parts of Northeast India tomorrow. The weather agency said that conditions are becoming favorable for withdrawal of southwest monsoon from some parts of West Rajasthan from tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. On to sports. At the Asian Games, the Indian women's cricket team entered the semi-finals after comfortably defeating hosts Japan by 8 wickets in Nissin today. In the quarter-final match, electing to field first, India bowled out Japan for a paltry 57 in 19.5 overs. In reply, India overhauled the target, posting 59 for 2 in just 5 overs. Shefali Verma led the chase with an unbeaten 40 off 15 balls. Harmanpreet Kaur-led Indian team will now face Bangladesh in the second semi-final on Sunday. The first semi-final match will be played between Pakistan and Sri Lanka on the same day. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held tomorrow. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from tomorrow until the 4th of next month. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरतेहाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदामात के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में यूएई के तआवुन और शराकतदारी को भी सराहा। यूएई के सदर ने वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद

0: और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकरर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकररी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकररी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें महकमे मासूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बुहरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जामात और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकलो हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैनुल अक्वामी जाब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकलीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधाकृष्णन ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अजम से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अजम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नजरिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीति आयोग ने यकुम जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फ्राहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के तीन अहम अज्जा हैं, गवर्निंग काउंसिल, वजीर आजम और तमाम वज़राए आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फ्राहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, बदलते वैश्विक

0: वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
2: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
1: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाजह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारी तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारी को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
4: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
3: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेंसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी आवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकतदार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉ मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिजाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क्यादत धड़े जिमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा।

0: सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूं, बहुत सारी स्कीमें हैं जो लोगों को पता नहीं। लास्ट ईयर जहां मैं रहता हूं वहां फार्मर्स मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं। उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट जेएंडके स्टेट की स्कीम थी एचएडीपी, मेरे जो कलीग्स थे दोस्त थे बहुत मेहनत करते लेकिन उनको स्कीम्स का पता ही नहीं है। आप भी जो रिलेवेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, या सेरिकल्चर तो अभी नहीं, हमारे थ्रू आप बहुत सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो, प्रोवाइडेड आप सही जगह पे जाओ, सही मानो जो कॉन्टेक्ट पर्सन हो उसके साथ कॉन्टेक्ट रखो ताकि आपको बेनिफिट मिले। राम मैं वही कह रहा हूँ, सॉइल से लेके एंड प्रोडक्ट और मार्केट।
1: चमकती है धूप। दादा फार्मर्स कॉन्टेक्ट।

0: shumina yodi ya self help group nang ata women zuk farming community ne ma khoni contribution gela yon yot yang ye agyang ni ri ni che channel li through message tan ki khon la hala agyang tan gela chu chesi tena tena zos lang ata women nga tan khona tyo income generation is so shik so shik charu khala le yo khon la yang khona family zuk nang yampong yampong ata khampe zuk nang yampong yampong ata yang khoni greenhouse na sabzi tops te khone chunga kyes chesi last ma gela chu na yot yang agyang khon baki nang yampo sector nang yampo gela zos chu chesi ye sangma la request song chen jua inyale thank you
1: Kasa madam le tayri ke nyas vele chik tifalus bad women se level group ya ga su chik chuk samna ga suk shesh to chazin ju yan den criteria chi yo mende ke cham chi yong mar go chazin ko group pe nu bash
0: ta women self help group ngai ngan la register yo dia kale even ye sang ko azer na sang ko na 500 plus self help group ngan la register yo dia le ten na tosla baki zone mun na yo ko ne ngan la ngai la register yo kan mun la ka benefit kon la thobi ni yon yale o de six mun na baki ngata yang la greenhouse is ugam beni
1: dan na tosla diri di agriculture exhibition pe Muhammad Ali Khan sahab ngachana bujuk sul ko ifal dus assalam alaikum
2: wa alaikum salam
1: ju goma erikana duty for looks with ki diri di exhibition pe anuk yana zerna dunmasi lokashik ngati agriculture department anuk और रोक्स बेंच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यार लखे बिमिंग ना यरस काफी जहमत खुश का निजु या जी एग्जीबिशन पो गचुक चिलते जु यरस
2: संसा का तस्पायत यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही मेहरबानी का दोना गवर्नमेंट ऑफ एनडीए मेहरबानी का नती दरे खत्ता लद्दाख से अनु गाल जों से अनु यरस्तान रे यरगे शिंगमा ना मामयो नचा बते दुनला या na chief agriculture officer yut pi doran yana dyutsos mana mamo yergeshik metpin dare thong mi hesab pe ka mana yerges mana mamo yon sedu organic zarkani concept pode zana mana metpin lekin 2021 sirgab na organic the initiative government of india dona ut administration ni meharbani kadiyam ngati khatta ladakh yan le दो लेपचस पस बसे ची सोंजर बना नती चाम से प्रोडक्ट नती कर यू लेना चाहे घोस्तार्जी इंचिक चाहे चुली चाहे सब्जी जाद इंचिक चाहे नता नॉर्बला इनका ना फंके यों मिदे ची सुन गंगमा इंचिक दोन गंगमा मिंग चिथोप मिंग पर चिथोप जर बना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन मिंग चिथोप इंशाल्लाह फ्रालुक्स का तो बना रे नतांगा हर चीज से अनु कमिक मना यों समेत ची एजर बना दरे डिस्ट्रिक्ट सुम छचास पोस बसे दो नगता ऑर्गेनिक डिग्लियर बचास पोस बसे नती ची ग्याला प्रोडक्ट ची बीन योतना दोनी दोन मना रिंतांग संचिक छचा दरे नगता सी बॉक्थन बीन योत दो में मा जूस का सुमी नते से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप निकाना लेने नियोत सिर्फ नता लास्ट पुची योत जरबना रिफाइनमेंट बे दोनियां जो जरूरत योत गाज उस्ताची का नते प्रेजेंट बाखेर बद न फिस्ते जगाऊं ला दे मलसाऊं ने अनुक दो चोक्स बसे प्रेजेंट बसे खर्चा गॉन थोंग मना इम्यून इम्प्रेस छचा चीज जरबना ऑर्गेनिका सक इम्प्रेस छचीन सगस चलचें की नष्ट ची सिख जना ऑर्गेनिक ची जोक पर समझाजिन लेकिन दे ऑर्गेनिक क्वालिटी मेंटेन जा पिफिया दोना गाज ची सी प्रोडक्ट ची यारे मार्केट यां खरीदना प्रेजेंटेशन को मना जरूरी इन लखमोबा से रदमोबा से खरीदना रे दो मिडुल भी सवाल मने
3: लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना सितंबर इल्जे चुगा चुक्षिगी रिसी दिचिगी जांसकारी तनमोला गोजुक बसे इन जगमा निस्पादी फेस्टिवल पे दियाना जगा मालदुक से मिमां सुनी जिंगजांग ना न्यंबो खाक लेने तनमो लेगिना दोखचन चोसे इन जरन जांसकार जिल्लाल दन मेकना फल्लागा दियू गोमा फेस्टिवल पो इन जरे जर से दी वक्सला लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टाल सगील तालुक्स बीन चीक डोक्सा एग्जीबिशन पोस्ट तने योत्खान लोखसो क्रिम्स ना चला गुनीस कोरियां तालुक्स बसे लोखसो यर्ग्यासी ला सुनी विर्चुअल जोस्ते का गोजुक बसे इन खोंगजियां डिग्री कॉलेज जांसकारी खुरी रिसाला शेरा पोयां गोजुक बाजगाव ला गोनबो रिंगजुंगी पोस्टल कावर पो भारतिया डागी लखथुती का बसे योत्खान इन मिन दुजदां पुना ग्रागन लेफ्टिनेंट गवर्नर जांसकार ला जिला थोपचाओ सिर्फ इंतजामी खिदमत उनसख लेप चुकचाओ चा मेन मा खते लोखसो खाखचन क्रिम सुनला स्केट ना स्ट्रोंग लुक्स तांसे मियुल गांग पोला